0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवत गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है, एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे, तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें, तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

Nein. Sicher, Johann.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं परंतु महासागर शांत रहता है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरो का खजाना है, ये कहना है सादिका। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Arun Vijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
7: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने सखा से प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ, लेकिन आज एक खास प्रोग्राम हम लोग डिजाइन कर लेकर आए आपके बीच में, और पुरानी यादों को ताजा करेंगे, उन यादों को ताजा करेंगे जब हम लोग देखा करते थे, जब हमारी बुनियादें बुनियाद यानी कि परिवार से जुड़ा करती थी। बुनियाद सीरियल का मैं जिक्र कर रहा हूं मैं हम लोग का, और उस अभिनेता का जिसकी बदौलत हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती, जिसकी बदौलत हमारे चेहरे पर खुशियां तमाम आ जाती। जी हाँ, मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं नन्हे एक्टर, जिन्हें हम नन्हे एक्टर कहा करते थे, जिनका नाम बहुत ही खूबसूरत है, अभिनव चतुर्वेदी जी। तो सर, सुरुशादा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: धन्यवाद, मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ आकर शारदा यूनिवर्सिटी और आपके स्टूडियो में, और सुनो शारदा 90.8 FM। मैंने सुना है कि बहुत बड़ा अच्छा आपका एक विकसित समुदाय चैनल है
7: जी।
6: 16 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, काश ये मेरे घर सरता विहार तक भी आ सकता
7: जी,
6: लेकिन सुना उसके लिए भी आपने एक ऐप निकाल दी है।
7: क्या बात,
6: तो अच्छा है कि एक कम्युनिटी रेडियो जिसकी बहुत सख्त जरूरत भी है, क्योंकि देश दुनिया की खबरें तो टेलीविजन दे ही देता है, लेकिन समुदाय की जो न्यूज है, जो उसके अपने अपने रोजमर्रे के काम है, उसमें आप इतना अग्रणी होकर काम कर रहे हैं। गगन जी, मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूँ।
7: देखिए दोस्तों, ये एक बात है, एक सुलझा हुआ इंसान ही कर सकता है, सुलझा हुआ एक कलाकार ही कर सकता है। थोड़ी ही बातें हमारी ऑफेयर हुई और सर ने उन बातों को एक अच्छी तरीके से पिरो कर हमारे सामने रख दिया। मैं आपको सर के बारे में और बताना चाहूंगा, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, और स्टूडियो में मेरे आज साथ ही खास मेहमान हैं अभिनव चतुर्वेदी जी। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। और स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं नन्हे एक्टर, जिन्हें हम नन्हे एक्टर कहा करते थे, जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है अभिनव चतुर्वेदी। दूरदर्शन को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि दूरदर्शन से हमारी दूर दूर तक की यादें जुड़ी हुई हैं। और वो दर्शन कराता था देश का, संस्कृति का, हमारी बुनियाद का। बुनियाद धारावाहिक को हम कैसे भूल सकते हैं, जो एक ऐसी पृष्ठभूमि पर आधारित था। और उसके अभिनेता अभिनव चतुर्वेदी जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और फ्लैशबैक में मैं अगर जाऊं तो थिएटर से शुरुआत रही, और शुरुआत रही जब दौर गुजर रहा था एक आप अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं अभिनेता के साथ। तो सर वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: मैं उस दौर में जाना चाहूंगा जब आप क्रिकेट खेला करते थे, राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भी आपने पदार्पण किया, फिर इस तरफ आना कैसे हुआ अभिनय की दुनिया में?
0: गगन जी, मेरे पिताजी मॉडर्न स्कूल बारखंबा रोड में पढ़ाते थे और बहुत ही मायनाज, बहुत ही बड़ा नाम था उनका क्रिकेट कॉमेंट्री जगत में, अभय चतुर्वेदी। तो जैसे घर में परवरिश होती है तो वो हॉकी बहुत अच्छी खेलते थे, नेशनल्स खेले थे। मैं भी हॉकी बहुत नेचुरली खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, लेकिन क्रिकेट की तरफ मेरा रुझान इसलिए हुआ क्योंकि कीर्ति आज़ाद हमारे स्कूल में थे
1: जी।
0: और वो जूनियर टीम में ही उन्होंने करीब एक ही मैच में डबल सेंचुरी लगा दी थी। तो कीर्ति भैया हो गए, भुवनेश चड्डा हो गए, दीपक चड्डा हो गए, अमिताभ कांत जो हमारे G20 के शेरपा हैं, वो भी क्रिकेट खेलते थे
1: जी जी
0: मॉडर्न स्कूल में। हाँ। तो इन सब सीनियर्स को देख देख के हमने भी सिक्स क्लास में क्रिकेट लेनी शुरू कर दी। केसी शुक्ला जी हमारे कोच थे और साथ साथ में राजू सेठी, भास्कर पिल्लई, ये भी आ गए थे स्कूल में। अतुल मारवा मेरे कैप्टन थे
1: जी।
0: तो फिर हमारे मैचेस होते थे सेंट कोलंबस स्कूल और बाल भारती एफओ स्कूल से। और बाल भारती एफओ स्कूल में सिक्स क्लास में मैं और मनिंदर सिंह जो दिल्ली इंडिया के लिए फाइनली खेले लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो खेलते थे। साथ साथ में हमारे जब इंटर जोन मैचेस होते थे दिल्ली के जितने खिलाड़ी थे,
1: हाँ।
0: मनोज प्रभाकर, हम लोग सब खेलते थे। तो अच्छा, अच्छी क्रिकेट होती थी और हॉट वेदर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते थे सिक्स फार्म से।
1: नाइस।
0: तो संदीप गोयल वहाँ पर खेलते थे। साथ साथ में जो तो जोन मैचेस होते थे जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के, तो कुछ बिहार ट्रॉफी में मेरा सिलेक्शन हुआ 11th स्टैंडर्ड में, तो मेरा पहला नेशनल्स था। और पहला नेशनल्स जो सीके नायडू ट्रॉफी में हुआ, तो गांधीनगर में सबसे पहला मैच हमारा हुआ संजय मांजरेकर के अगेंस्ट। और मेरी बॉलिंग एनालिसिस थी कोई 19 ओवर 12 मेड इन, कोई 22 रन और विकेट लेस, लेकिन वो संजय मांजरेकर के साथ मेरी जिस मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, संजय से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। फिर मनिंदर थे ही साथ साथ में। फिर मैं कूचबिहार नेक्स्ट ईयर दिल्ली के लिए भी खेला अंडर 19, और उसी साल मुझे कैप्टन उस मैच में सेकंड ईयर में चेतन शर्मा वाज प्लेइंग फॉर हरियाणा। तो हमारे मैचेस जो जोनल्स के होते थे, चेतन शर्मा वेरी वेरी क्विक बॉलर और इंडिया को नॉक कर रहे थे। फिर अंडर 19 12th स्टैंडर्ड में आई वाज मेड कैप्टन दिल्ली स्टेट अंडर 19 इन गुवाहाटी, जहाँ हमने पिछले रनिंग चैंपियंस गुजरात को 5.5 दिन में इनिंग्स डिफीट करके भारत के भेज दिया
1: जी।
0: और असम को भी यही किया। फाइनल में हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश से हुई, जहाँ विशाल भारद्वाज, दी विशाल,
1: बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आपने खेला।
0: बंटी यूज्ड टू प्ले मिडल ऑर्डर बैट्समैन एंड लेग स्पिनर, तो विशाल भारद्वाज जिन्होंने माचिस बनाई है, दुर्गी बिजली का मंडोला बनाया है, हैदर बनाई है,
1: बहुत बड़ा।
0: विशाल और मैं 12वीं साल क्लास से बंटी को मैं तब से जानता हूँ।
1: क्या बात।
0: और फिर जाके फिर इंडिया ने 19 में मेरा नाम आ गया, लेकिन मेरे फादर ने मुझे जाने नहीं दिया बिकॉज आई हैड माय बोर्ड एग्जाम्स। और फिर मैं अंडर 22 खेला दिल्ली के लिए, जहाँ मनोज प्रभाकर हम सब साथ क्रिकेट खेलते थे। और नवजोत सिंह सिद्धू मेरे कॉलेज में भी आए, दो तीन दिन मेरी क्लास में बैठे हिस्ट्री ऑनर्स में सेंट स्टीफन्स कॉलेज से, वहाँ भी अच्छी क्रिकेट खेली साथ में। और फिर अंडर 22 और 5 रणजी ट्रॉफी कैंप्स मैंने किशन सिंह बेदी जी के साथ अटेंड किए।
1: लवली।
0: तो वो क्रिकेट मैंने खेली डिस्पाइट माय फादर, मतलब मेरे फादर कुछ बोलते नहीं थे कभी किसी को सिलेक्शन में। वहाँ तक जाना, चेतन चौहान, मनिंदर सिंह, मनोज प्रभाकर, चेतन चौहान, रमन लामा, कीर्ति आज़ाद, मदन लाल जो 83 की कप की, सुनील वॉल्सन, इन सब के साथ मुझे क्रिकेट खेलने का सौभाग्य मिला।
1: बहुत अच्छा।
0: तो फिर यूनिवर्सिटीज के मैचेस खेले, उसके बाद फिर क्रिकेट का भूत तो अभी तक नहीं उतरता
1: जी,
0: तो अभी भी हमारी वेटरन्स क्रिकेट इंटरनेशनल करके संजीव सेठ, उसके नॉर्थ के हेड हैं, अभी हम 50 प्लस वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और अभी मैं डीडी स्पोर्ट्स में एंकरिंग भी कर रहा हूँ, और तो क्रिकेट से मेरा अभी तक संबंध है रहा है। भारत की जो विमेंस टीम ने जो
1: वर्ल्ड कप जीता
0: है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बहुत अच्छा है कि विमेंस टीम एक इंस्पायर करेगी और जनरेशन्स को भी, क्योंकि जिस बीड़े को जूलियन गोस्वामी या अंजुम चोपड़ा या मिताली राज ने उठाया

0: वो इस टीम ने थ्रू
1: करके दिखाया,
0: हरमनप्रीत कौर ने उनकी टीम ने करके दिखाया। बहुत बड़ी बात होती है कि मुसलसल आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यू नो कांस्टेंट प्रहार कर रहे हैं कि भाई हमें जीतना है, और इस बार उन्होंने करके दिखाया है, तो भारत उनको बहुत बधाई देता है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लिसनर्स, मुझे लगता है कि सर अगर अभिनय की दुनिया में नहीं होते, जिस तरीके से क्रिकेट में नाम कमाए और आगे जाकर और नाम कमाते और देश के लिए खेलते, लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट आता है और उसके बाद हमारी लाइन चेंज हो जाती है। सर से मैं ये जानूंगा जरूर कि किस कदर ये लाइन चेंज हुई, क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, और अभिनय की दुनिया में आना कितना आसान है, क्या टफ है। स्टूडेंट्स के लिए वो क्या एक संदेश आखिर में देना चाहेंगे, आखिर मैं आखिर की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं। तो वक्त है हमारे छोटे से म्यूजिक ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशाद 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ, और स्टूडियो में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनको देखकर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम खुश होते थे, हम मनोरंजन की दुनिया में चले जाया करते थे, उनको देखकर हम बड़े हुए हैं। हमें भी लगता था कि हमें भी एक ऐसा ही एक्टर बनना है। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, हमें लगता है कि निश्चित तौर पर जब हम क्रिकेट खेला करते थे या खेलेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे। जी हाँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं बुनियाद और हम लोग के बड़े खूबसूरत एक्टर बाज सौदागर बुनियाद। इस तरह से तमाम यूं कहें कि एक लंबा अनुभव के साथ आप आते हैं। आप हैं अभिनव चतुर्वेदी जी। तो सर, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर, ये जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, ये जो चेंज आया जब आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बाद आपने स्विच किया अभिनय की दुनिया में, तो कितना आसान था या कितना टफ था?
0: देखिए, मैंने अभिनय शुरू किया 5 वर्ष की उम्र से, जब मैं ओम शिवपुरी जी जो हमारे मॉडल स्कूल कैंपस में रहते थे
1: जी,
0: मेरे फादर भी वहीं रहते थे, तो हम लोग सब एक ही कैंपस में रहते थे। तो थिएटर तो मैंने बहुत जल्दी उम्र में शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ कि वो क्रिकेट भी शुरू हो गई, तब एक वन सिंगल व्हीलर से वो 2 व्हीलर बन गया। अब गाड़ी और समझ में नहीं आती थी कैसे चलानी है। तो क्रिकेट अच्छा खेलना शुरू किया। पतला सुखड़ा सा मैं होता था, मेरे को ऑफ स्पिन फेंकनी आती थी और बैटिंग तो मेरी थी और फील्डर में बहुत अच्छा था।
1: आप अच्छे इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी, आंखें बहुत खूबसूरत हैं सर आपकी।
0: जब मार खाते हैं तो अपने आप अच्छे बन ही जाते हैं। मार खा खा के इंसान को, कहते एक शेर है उर्दू का
1: जी,
0: सुर्ख रू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद।
1: क्या बात।
0: तो जब तक आप पिसेंगे नहीं, जब तक इफ यू डोंट गो टू ग्राइंड सेशन, हुआ उसमें मैं ये कह रहा था कि जब तक आप ग्राइंड के थ्रू नहीं जाते,
1: क्या बात,
0: तब तक आप निखर के नहीं आते। और उसके लिए ग्राफ का ऊपर नीचे होना बहुत जरूरी है। पर मेरे गुरु इतने अच्छे थे कि दीनानाथ जी ऑल इंडिया रेडियो में, सत्यन शरद, मुद्रा राक्षस नाटकों में करने गया, ओम शिवपुरी जी, सुधा दीदी, सुधा आंटी, विवेकानंद साहब, बीएम शाह, विश्व मोहन बडोला, मेरी अपनी स्कूल की टीचर मिसेज उमा सहाय,
1: क्या बात,
0: और बनवारी तनेजा, रवि बासवानी, फिर जब मैं डायरेक्शन में मतलब एक्टिंग करने गया तो रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई थी, वो मेरे डायरेक्टर, सुभाष घई, सुभाष घई साहब, राहुल रवेल जी जिनके साथ मैंने 2 फिल्में की, राकेश कुमार जिनके साथ मैंने सूर्यवंशी की, और वो डायरेक्टर थे 11 फिल्म के अमिताभ बच्चन जी के साथ,
1: बहुत बड़ा था,
0: बाज गोविंदा जिसमें एच सुभाष डायरेक्टर थे। तो वो सारा का सारा जो गुरुओं के थप्पड़ पड़ने, मतलब शिक्षा के थप्पड़ पड़ने, उसने मुझे हमेशा, कहीं मैं गलत हुआ तो सवाल पूछ लेता था भी क्या प्रॉब्लम है, और वो वैसे ही थे कि आज मतलब बताना है, डिटेल में समझाना है। तो वो एक अच्छे, आई वाज लकी कि मुझे अच्छे गुरुओं ने उठाया भी, और जब मैं फॉल किया, मेरी जब पहली फिल्म फ्लॉप हुई पर्वत के उस पार, तो उसने मुझे संभाला भी।
1: क्या बात है
0: कि डोंट गिव अप, वी आर ऑल देयर फॉर यू। मेरी पिक्चर फ्लॉप होने के बाद रमेश जी ने मुझे भ्रष्टाचार फिल्म दी रेखा जी मिथुन जी के साथ और रजनीकांत सर के साथ काम करने के लिए, और राहुल जी ने मुझे दी योद्धा संजय दत्त और सनी देओल के, तो दोनों फिल्में फिर मेरी अच्छी हुई और ठीक ठाक चलता गया। फिर जब सौदागर कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मुझे, मेरे फादर को कैंसर हो गया तो मुझे दिल्ली वापस आना पड़ा, मेरे कोई भाई बहन नहीं है तो मेरी शादी हो गई, और फिर मैंने अपनी दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। अब मैं जब वापस शिफ्ट किया तो मैं डिप्रेशन में चला गया, बिकॉज मेरे पास कोई काम नहीं था
1: जी,
0: और सब यही सोच के गए थे भैया यहाँ से तो हीरो बन के जाएंगे
1: जी जी,
0: और लौटे जीरो बन के, तो सब ये कहते थे कि भाई पता नहीं आदमी कैसे करेगा क्या करेगा
1: जी।
0: सो आई सेट अप माय ओन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी व्हिच इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग उसमें फिल्में बनाते हैं, कॉर्पोरेट जिंगल्स करते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाते हैं। फिर जैसे जैसे लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, मैं एंकरिंग में चला गया, शोज को एंकर करने शुरू किया, और मुझे अवसर मिला भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने के लिए, कलाम साहब का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी मैंने काम किया, जगजीत सिंह के साथ मैंने 32 साल काम किया,
1: बहुत बड़ा,
0: अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैंने 10 से ज्यादा कम से कम इवेंट्स किए होंगे एज एन MC एंड एज एंकर। अब फिर मैं रेडियो मिर्ची पहुंच गया, तो जैसे एक लक्कड़ नदी में घूमता घामता पहुंच जाता है वैसे मैं भी पहुंच गया रेडियो मिर्ची। सो आई टू डू अ शो कॉल लल्लन भैया ऑन इन टू वॉइसेस ऑन अ संडे स्पेशल। उसमें वो लल्लन जो है वो चांदनी चौक का कैरेक्टर है। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है,
1: क्या बात
0: है, बोल दियो, चटक मारे इसको। और अभिनव चतुर्वेदी से वो बात करता था।
1: मतलब यूं समझ लीजिए कि आप इस चीज के जनक हैं। आपको देख के रौनक ने शायद ऐसा किया होगा, या आपको देख के हम लोग कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। न्यू जनरेशन भी कहीं ना कहीं ड्यूअल वॉइस के साथ काम कर रही है, तो हम तो भीष्म पिता मैं आपको कहेंगे।
0: देखिए मैं अपने आप को और भी सिंपल कर लूं, इसकी उत्पत्ति कहां से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारे यहाँ भारत में टेलीविजन पे कोई पेयर्ड कॉमेडी नहीं रही। जैसे बाहर आप देखें तो लॉरेल हार्डी या बड एबट कोस्टेलो की जो क्लासिक सीरीज होती है, भारत में अभी तक टेलीविजन में कोई डबल कास्टिंग नहीं हुई। जैसे सत्यन हरी में बना रहा हूँ, तो हम लोग जो पहले दिन ऑडिशन करने पहुंचे रेडियो मिर्ची, तो इंग्लिश में कर दिया, ओके हो गया, हिंदी में कर दिया, ओके। मैं बैठा हुआ था गर्मी का मौसम अपनी गाड़ी के अंदर
1: जी।
0: बहुत ही पक गया था, मैंने कहा यार अभी तक सर यार ये चांदनी चौक का दिल्ली का चैनल है, जरा सोचा दिमाग लगाया दिल्ली के चैनल में क्या करना चाहिए।
1: हाँ।
0: तो दिल्ली की असली पहचान पुरानी दिल्ली है।
1: हाँ।
0: पुरानी दिल्ली से कैरेक्टर लिया लल्लन, वो हैप्पी गो लकी बंदा है, वो खुद भी कपड़े पहन लेता है, किसी की शर्ट उतार के पहन लेता है बड़ा। और वो हाँ। वो जो जहाँ रहता है उसका हमने क्या किया, उसकी गली का नाम दिया 98.3। उसके घर का नाम था 98.3। बोले उससे पूछता भाई तुम्हारे तुम कहाँ रहते हो, 98.3 मतलब क्या है सर, कोई एड्रेस होता है 98 एड्रेस होता है 99 98.3 कदम हमारी। तो यू नो वो एक बड़ा हैप्पी प्रोग्राम था और उसको मैं ही लिखता था
1: जी।
0: तो हमारे एक मित्र हैं आप पार्टी वाले पुराने आशुतोष, तो आशुतोष के साथ में क्रिकेट मैच खेल रहा था, तो आशुतोष भैया ने मुझे कहा, क्राई का मैच था, ये ललन और अभिनव आप ही करते हो, और जिस तरह से उन्होंने कहा, मैंने कहा तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं ललन भी करता हूँ, तो कहते क्या जरूरत है अभिनव चतुर्वेदी को किसी एक घटिया आदमी से 20 साल काम करने के बाद गाली खाने की ऑन एयर। सो ही क्वाइट could relate to that part, कि ये वही कैरेक्टर है। और वो 3 साल प्रोग्राम चला एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मेरे लिए सबसे थेरेपी का भी उसने काम किया, कि एक तो व्यंग कॉमेडी और साथ साथ में सोशल इश्यूज को उठाना इंफॉर्मेशन के टूल पर। और इसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक हमारे यहाँ एक वो जो चीज़ एल से होती थी उसको ओन कर लेता था, कि मतलब हमारी है। कहते हैं अभिनव जी जितनी गाड़ियाँ देख रहे हो ना रोड पे चलती हैं, जिस जिसके पीछे एल लिखा रहता ना हमारी लल्लन मोटर स्कूल की है। अब आप सोचिए कहीं से किसी का लेना देना नहीं, और ये लड़कियां ना बड़ी टेढ़ी चलती हैं, राइट का निशाना करके लेफ्ट को चली जाती हैं, जरा धीरे चलियो। तो क्या होता है कि वो सारा का सारा जो रोड पे होता था
1: वो आप कैच कर,
0: अरे कहीं मिल जाए तो बता दीजिए हमारी मोटर स्कूल के हैं, ठोक दो तो ठोक दो, जान बची रहनी चाहिए,
1: क्या बात है,
0: गाड़ी तेरे पर आ जाएगी, जान जाए पर बचन न जाए, यू नो दैट काइंड ऑफ सोशल एंगल से। और वो 3 साल बहुत हैप्पी स्कूल था। एक यहाँ तक कि एक पिक्चर में अभिषेक बच्चन का नाम था लल्लन, तो वो अभिनव चतुर्वेदी को गोली देता है, कहता आज मैं एयरपोर्ट पर ना मुझे लल्लन मिल गया था, कि लल्लन तो तुम ही हो, यानी वो आता अभिषेक, अच्छा अभिषेक कौन, अरे बच्चन, अच्छा मतलब दिल्ली, सुन रहे हैं आप अभिषेक बच्चन, अभी तेरे से मिलेगा क्या, तेरे मिला कैसे नहीं था, और रात को 12:30 बजे आ गया हमारे पास,
1: आ गया, क्या बात है,
0: रात के 12:30 बजे कहाँ पहुंचा, अरे भाई 98.3
1: जी
0: साकड़ से उसने दरवाजा खटखटाया, बोले मैं कमिंग, हमने कहा आ जा भाई चांद कहाँ से आ रही है, बोल क्या चाहिए तुझे, ऐसा है मैं चाहता हूँ ना मेरी नई फिल्म आ रही है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना नाम लेंड कर दो, अच्छा मतलब तुमने उधार मांग लिया उससे, उसने तुमसे नाम ही इतना बड़ा उधार
1: मांगा,
0: तो फिर वो कहता है कि कहते नाम तो ले जा पर ब्रांड को बट्टा नहीं लगना चाहिए, फिल्म सुपर हिट होनी चाहिए, नाम हमारा नाम इन्वॉल्व है। सी यू अ मैन हु वाज नॉट एग्जिस्टिंग, और मुझसे लोग आके कहते थे लल्लन से मिलना है,
1: ओह लवली,
0: जबकि वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं ही ललन था, मैं ही अभिनव था,
1: जिसमें एक जान।
0: तो वो एक आर्ट है जो विल बाहर वेस्ट में बहुत पॉपुलर है, वेंट्रोकुलिज्म के नाम से, जिसमें आप अपनी आवाज को थ्रो कर सकते हैं, उसका सहारा लेते हुए फिर वो शो 3 साल चला है। आई रियली एंजॉयड इट। मैं तो खुद हंसता था वो शो लिख लिख के रात को, और मेरे घर वाले सोचते थे आदमी पागल हो गया।
1: नाइस सर। तो लिसनर्स, ये बात बहुत ज्यादा खिंच गई, यहाँ पर एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। सर पानी पी लेते हैं, मैं थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत।
2: उषा, मेरे पास भी एक छोटा सा करेक्टर होता है, ये बहादुरी जो कि नेपाल से आया।
1: ये सर एक छोटा सा करेक्टर मेरे पास होता जो मैंने कहा ना कि हम आप लोग को देखकर सीखकर बड़े हुए हैं और यहाँ कतई की भाषा सीख गया, यानी कि दिल्ली एनसीआर की भाषा सीख गया। जो आपने ललन का जिक्र किया, मुझे सैयद जाफरी साहब का वो वाकया याद आ रहा है कि एक फिल्म आ रही थी, जिस तरीके से उन्होंने रिसर्च किया वो भी वहीं पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, चांदनी चौक पहुंचे, उस करेक्टर को उन्होंने उठाया, क्या कर रही है, कैसे जा रही है वगैरह वगैरह, उस तरीके से वो फिल्म में लेकर चले गए। ऐसी जब मैं कुछ करने जा रहा था तो मैं मथुरा के करेक्टर को उठाना चाह रहा था या फिर कुछ और खास उठाना चाह रहा था, मैंने बहादुर को पिक किया जो कि नेपाल से आता है और यहाँ की भाषा सीखता है, मिक्स होता चला जाता है। सो लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे स्टूडियो में अभिनव चतुर्वेदी जी जो कि बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे एंकर हैं, अच्छी क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेट आपने खेला है, एमसी हैं और एंकरिंग की यूँ समझिए कि हमें बारीकियां सर से सीखनी चाहिए। जब मेरी मुलाकात सर से हुई फेस टू फेस, मैं कहने वाला था लेकिन अब मैं कह देता हूं, सर माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आप आवाज़ के धनी भी हैं, आप हरफन मौला हैं, कैसे आवाज़ को मेंटेन करते हैं और कैसे हमें आवाज़ का ख्याल रखना चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहला आवाज़ को बचा के रखना चाहिए पानी की तरह
1: जी,
0: आवाज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए और आपको सब खाना चाहिए।
1: सब खाना चाहिए,
0: सब खाना चाहिए।
1: लोग कहते हैं खटाई नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना।
0: जैसा जितना आप गले को अगर आप तंग नहीं करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। मैं आपको मकसद बता देता हूँ
1: जी,
0: एग्जांपल के सहित, उसका प्रमाण भी है मेरे
1: जी
0: पास।
1: जी जी,
0: भारत में जितने शास्त्रीय गायक हुए हैं क्लासिकल के, वो सब अपनी सुपारी अपने पास रखते हैं और लौंग और सुपारी खाते हैं।
1: लौंग, सुपारी,
0: सुपारी की तासीर बेसिकली क्या है, वो खरज पैदा करती है, खरज पैदा करती है, जो रेशे सुपारी के वोकल कॉर्ड्स को खोलते हैं, उसकी सारी हस्क जो है वो सुपारी खाने से आती है। सुपारी खाने से,
1: ये कच्ची भीगी कैसे?
0: कच्ची सूखी सुपारी,
1: सूखी सुपारी,
0: गीली भी आप खा सकते हैं लेकिन सूखी सुपारी, सुपारी इसके जितने वोकल कॉर्ड्स के रेशे हैं वो सब खोलती है।
1: अब आप ये बताएं कि क्या उसको चबाने से या उसका रस लेना?
0: कुछ भी करने से उसको फर्क नहीं पड़ता।
1: अच्छा।
0: लेकिन आप किसी के हाथ से सुपारी नहीं लेंगे, बिकॉज सुपारी में बहुत सारा काम होता है, कभी पान भी किसी से नहीं लिया
1: जी।
0: रोली मिला के उससे कुछ लोग टोटका कर देते हैं, आवाज चली जाती है। जितना आप अपने गले को उसको तोता बना के रखेंगे वो उतना तकलीफ करेगी, बिकॉज गले का ताल्लुक सीधा ईयर, नोज, थ्रोट। आपका वैसे भी नाक बंद होगी तो आपके गले पे असर पड़ेगा, बिकॉज दोस थ्री आर मेडिकली इंटरकनेक्टेड। एंड उसको आवाज को बनाना, ऑर्केस्ट्रेट करना, वो एक अलग चीज, क्योंकि हम फिर गायकी का भी प्रयोग करते हैं इसमें। हम लोग जब गाते हैं, जैसे मैं गाता हूँ तो मुझे गाने का शौक है
1: जी।
0: तो मेरी आवाज की टोनालिटी किस सिंगर के साथ जा सकती है, मैं हाई पिच पे नहीं गा सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दो गजल का एक शेर सुना देता हूँ
1: जी, प्लीज।

0: अल्फाज।
1: क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह।
0: तो क्या है कि आपको अगर म्यूजिक की भी ग्रामर है, उसके उतार चढ़ाव, उसका क्रिसेंडो, उसका नीचे उतरना, तो आप जब मंदिर सप्तक में गाएंगे नीचे करके तो अलग हो गया। फिर दूसरी जैसे वो पंकज जी की कोई

0: बहुत अच्छा, लवली। आज हमारा दिन बन गया दिन।
1: एक उस्ताद के बीच में हम बैठे हैं और एक अनुभव के साथ आप आते हैं और बहुत बड़ा अनुभव है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। और खासकर जहां स्टूडियो में साथ भी तीन इंटर्न जुड़े हुए हैं, वो भी ये साक्षात्कार जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में उसको आत्मसात कर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे लेकर जा पाएंगे। अभिनव सर, आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बारीकी से आपने अपनी चीजें बताई हमें, हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप हेल्दी रहे।
2: बहुत बहुत अनेक आभार आप सभी का। और मशीन्स तो मशीन्स हैं, इनसे काम लेना भी हमें आता है। भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हम इन्हें मशीन बनाई और हम इनसे काम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, आपने बुलाया एंड छोटी सी मुलाकात की। इसी तरह सुनो शारदा, सुनते रहिए।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ, उसका 6 मिनट 23 तारीख क्या है खास जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद, डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑडियो सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ सुरेंद्र शर्मा की आवाज में, जानी तेरा नाम।

0: शर्मा जी की आवाज में।
1: अरे शर्मा तो रोहित शर्मा नहीं, ये सुनंदा शर्मा। शाबाश शर्मा जी के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार। 9 मिनट 23 तारीख। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरक्षा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। ज्ञान विज्ञान, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, तमाम बातें लगातार मैं आप तक पहुंचा रहा होता हूं। सुबह का वक्त है तो सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मौसम के मिजाज की अगर हम बात करें तो आज 23 सितंबर 2026 को ग्रेटर नोएडा में मौसम साफ और धूप वाला रहने की संभावना है। और जबकि आगामी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर 24 से 29 सितंबर तक ट्रैफिक डायवर्जन की तैयारियां शुरू कर दी गई। ये दो बातें लगातार मैंने आपको बताई। मौसम का हाल यानी कि अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान। स्थिति यानी कि दिन में आसमान साफ और धूप खिली रहेगी। बारिश की संभावना 0 से 10% के बीच है। आर्द्रता बोले तो ह्यूमिडिटी, हवा में नमी करीब 58% रहेगी और जिससे हल्की उमस महसूस हो सकती है। ट्रैफिक की जब मैंने बात की तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 यानी कि ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले आयोजन के कारण उसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने 24 से 29 सितंबर तक एक विशेष डायवर्जन प्लान तैयार किया है। तो उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी है, यानी कि आने वाले दिनों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहने वाली है। और प्रतिबंध के बारे में जाने तो इस दौरान सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों यानी कि मालवाहक गाड़ियों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। जो भी माल मंगाना है पहले मंगा लो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशाता 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं गगन आपके साथ। शारदा विश्वविद्यालय के आंगन में, प्रीमिसेस में, प्रांगण में क्या खास है उसके बारे में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशाता 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। क्या बात है, तू हर लम्हा खामोशियां अरिजीत सिंह की आवाज।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा

0: बस अमली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सही बात है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। 9:21 23 तारीख, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। 23 तारीख बोले तो बुधवार का दिन, और क्या है खास उसके बारे में बात कर लेते हैं। खास बात यह कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इशारा किया था कि आज एक खास बात है, खास दिन है। शारदा विश्वविद्यालय के सांगन में, प्रांगण में, प्रीमिसेस में कुछ खास होने जा रहा है। कुछ खास आगमन हो रहा है एक ऐसी शख्सियत का जिसको अक्सर आपने टीवी पर देखा है, जिनको आपने सुना है, जिनके बारे में आपके पास बहुत सारी मालूमात है, और वो पर्चा निकालते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। बागेश्वर धाम जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का मैं जिक्र कर रहा हूं, और एक विशेष कार्यक्रम यानी कि जब वो दिव्य दरबार लगाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो किसी को जानते नहीं है लेकिन बातें उनकी जब डिस्कशन होता है तो लोगों को लगता है कि हाँ बाबा को कैसे पता है। अर्जी लगाने की जो प्रक्रिया है, और अब हाउ टू रीच यानी कि वहां धाम कैसे पहुंचे, ट्रेन के जरिए पहुंचे, हवाई जहाज के जरिए, सड़क मार्ग, लेकिन अगर हम उनको यहाँ ले आए तो यहाँ कैसे पहुंचे, यानी कि शारदा विश्वविद्यालय के आंगन में आज वो स्टूडेंट्स के बीच में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स से बहुत सारी बातें होंगी, संवाद होगा, और वाद विवाद बिल्कुल नहीं होगा, संवाद होगा, और एक विशेष कार्यक्रम यानी कि माइंड सेट लाइफ सेट प्रोग्राम के तहत आज स्टूडेंट्स से, फैकल्टी से, स्टाफ से वो मुलाकात करेंगे। और इसी मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी बहुत टाइट रहने वाली है। टाइम से आप अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं, अगर आप उस प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे हैं तो 12:30 बजे तक आपको एंट्री मिल रही है, और पार्किंग के लिए जो व्यवस्था की गई है उसी स्थान पर अपनी गाड़ी को पार्क करेगा, वरना दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। आपका आई कार्ड आपके पास होना चाहिए, और DSW ने जो आपको कार्ड प्रोवाइड कराया है एक लिंक के जरिए, वो आपको शो करना होगा। हाँ, कुल मिला के आज का शो हाउसफुल है, हाउसफुल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जो छतरी बांधते ऐसा कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कहते ना कि बजरंगबली के भक्त हैं, तो जय बजरंगबली, कहते तोड़ दे दुश्मन की नली, कुछ ऐसा डायलॉग है ना। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जाँच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: बिल्कुल, आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ऑल सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:32, 23 तारीख यानी कि बुधवार का दिन। चलिए, क्या है खास? अगर आप बैंक जा रहे हैं तो क्या करें? बैंक जा रहे हैं तो रुपया आप निकाले। हाँ, रुपया तो निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब क्या ये क्या था, मैं भूल गया बच्चों की। चलिए, आप अगर भूल गए तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि आने वाले समय में बैंक ने आपको अपडेट कर दिया है कि हड़ताल पर वो लोग जा रहे हैं, हड़ताल पर बैंक का अलर्ट है और इस दौरान UPI और फोन बैंकिंग काम करेंगे। ये किस बैंक ने अनाउंस किया उसके बारे में भी जान लेते हैं। PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने 28 सितंबर से 3 दिनों की हड़ताल के बारे में अपने जो कस्टमर है, कस्टमर मत बोलो, कस्टमर हो गया वो, तो उनको दिक्कतें होंगी ना। हाँ, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि कर्मचारियों को भी कोई दिक्कत हो, इसलिए वो भी हड़ताल पर जा रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही गगन, तुम बहुत आगे जाओगे, मतलब उज्बेकिस्तान, बिकॉज देयर इज अनदर वन शाखा फ्रॉम शारदा विश्वविद्यालय। हाँ, शारदा विश्वविद्यालय की वहां पर शाखा है, लेकिन बहादुर ने मेरी बात को समझा क्योंकि मैंने बैंक कर्मियों की जो बातें उनको भी समझा और साथ ही साथ हो सकता है कि इस समस्या का समाधान निकले। लेकिन 3 दिन तक हड़ताल है पंजाब नेशनल बैंक की, 28, 29, 30 सितंबर तक की हड़ताल चलने वाली है। तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है कि पहले काम कर लें, उसके बाद हो सकता है कि अगर आप उस दौरान गए तो फिर ना कहेगा कि हमने आपको अपडेट नहीं किया। और आने वाले समय में त्योहारों का सीजन, और जब त्योहारों का सीजन होता है उसके साथ साथ जब UPI का जिक्र हो रहा है, चार्जेस का जिक्र हो रहा है, MDR का जिक्र हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे जरूर कि व्यापारियों पर कितना टैक्स लगेगा, कहां छूट मिलेगी, जो छोटे छोटे मझले व्यापारी हैं उनको क्या दिक्कत परेशानियां हो रही हैं, या 15 अक्टूबर से क्या खास होगा। UPI के बारे में अपडेट सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के बाद। शैतानिया, ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी शैतानिया, नीत ब्रदर्स देवनेगी की आवाज, निकिता गांधी की आवाज, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
1: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
0: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
1: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
0: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
2: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सुरुषादा 90.8 FM पर. गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ. 9:41 23 यानी कि बुधवार का दिन. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया यानी कि गणेश जी की कृपा जो है वो हम सब पर बनी रहे, हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है. और गणेश उत्सव शुरू हुआ 14 सितंबर से और ये चलेगा 25 सितंबर तक. फिलहाल एक उत्सव चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में. उत्सव ये है कि 15 अक्टूबर से क्या खास होगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया की, यानी कि NPCI ने UPI के बारे में जो अपडेट्स दी हैं कि 6 साल तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसका लाभ उठा रहे थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में 15 अक्टूबर से कुछ चार्जेस लगेंगे उन लोगों पर, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR का जिक्र हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0.4% का जिक्र हो रहा है. और ये बातें हो रही हैं बिजनेसमैन के बारे में, व्यापारियों के बारे में, यानी कि अगर आप और हम लेन देन कर रहे हैं तो इस सेवा से आप और हम बचे हुए हैं. लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो मिस इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं आप आसपास तैर रही होती है. यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा. अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है 15 अक्टूबर से पहले ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. और 15 अक्टूबर के बाद भी अगर कोई कर रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार की निगाहें हैं कि कौन इसका गलत फायदा उठा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई होगी. हाँ, यानी कि कुल मिलाकर आम जन को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. सरकार कह रही है कि कोई हिडन या प्लेटफॉर्म फीस नहीं है. जब UPI का जिक्र कर दिया तो मैंने 28, 29, 30 तारीख को PNB की हड़ताल है, लेकिन 26 का शनिवार, रविवार 27 का, तो कुल मिलाकर 5 दिन यूं समझ लीजिए कि PNB बैंक आप उसके बारे में ना सोचें, ना उस तरफ जाएगा. अगर कोई काम है तो पहले या बाद में कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग.
1: लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक, दो दीवाने शहर में, ओनली ऑन सारेगामा. सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुरुषादा 90.8 FM.

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही केवल और केवल सुनो शादा 90.8 FM। हाँ मतलब हिंदी में ये है, अंग्रेजी में वन एंड ओनली। चलिए हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए, सरल सुगम आसान बनाइए अपने रास्ते को ताकि आप अपनी मंजिल तक यथा समय पहुंच पाए। शारदा विश्वविद्यालय के पास की अगर मैं बात करूं, शारदा अस्पताल के बराबर में एक है CNG पंप, और अक्सर हमने देखा है कि लोग वहां CNG भरवाने आते हैं, वहां अब जाम की स्थिति बनी रहती है। तो कुल मिलाकर अगर आप 10 से 15 मिनट पहले घर से निकल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने कार्यालय ऑफिस समय से पहुंच पाएंगे। 10 से 15 मिनट पहले ऑफिस से निकल सकते हैं? नहीं, लफड़ा हो जाएगा ये विषय। हाँ दिक्कतें हो सकती हैं और बॉस आपको शो कॉज नोटिस भी दे सकते हैं ना। चलिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि समय का ख्याल रखें, गलत दिशा में गाड़ियां ना चलाएं। शारदा अस्पताल अगर वहां है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो कि वहां है ही, लेकिन जिम्मेदारी ये बनती है कि सबसे पहले एम्बुलेंस को हम रास्ता दें। आज एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है शारदा विश्वविद्यालय के आंगन में, प्रांगण में, प्रिंसेस में, जिसका उद्घाटन करने आ रहे हैं बागेश्वर धाम के पंडित श्री कृष्ण शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे साथ होंगे। और यहाँ पर एक स्वर्गीय आनंद स्वरूप जी और स्वर्गीय शारदा माता जी की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। टाइम रहेगा लगभग 1:15 बजे, 1 से 1:15 के बीच में। उसके बाद आनंद स्वरूप सभागार में प्रोग्राम होगा, और जहाँ पर क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य होगा। जो गेस्ट है उनका वेलकम किया जाएगा। प्रो चांसलर सर, चांसलर सर सभा को संबोधित करेंगे, अतिथियों का स्वागत होगा, और फाइनली पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखने के लिए, सुनने के लिए, माइंड सेट, लाइफ सेट पर प्रेरक

जज्बात है, तेरा चेहरा जब नजर आए सुकून मिलता है और उसके चेहरे को हम बार बार देखना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन, आपके साथ वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11। हिमेश रेशमिया के बोल, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक और अरिजीत सिंह की आवाज में सनम तेरी कसम से तेरा चेहरा। वक्त का इशारा, मैं ले रहा हूं अनुमति। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहेगा। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, है ना। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। बस

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

से जीवन सफल हमारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, सौ में चमके न्यारा वो, सौ में चमके न्यारा वो जो अपना फर्ज

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप तक जानकारियां पहुंचे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि नौवां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो चुका है, थीम भी रखी गई है कि हमारी आंगनबाड़ी हम सबकी जिम्मेदारी। और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशा बहन जी ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि जन जन तक जानकारी पहुँचे, और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं उनको समय पर पोषण मिले, टीकाकरण का हो, बच्चों का टीकाकरण हो। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ में हैं दीपशिखा बहन जी, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं एचआर में, और इनसे हम बात करेंगे। तो बहन जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपका आंगनबाड़ी सेंटर है, क्या कुछ सेवाएं यहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको दी जाती है?
2: गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराते हैं, उनकी फर्स्ट ANC कराते हैं, सेकंड, थर्ड, चार जांचें होती हैं गर्भवती से पहले वो कराते हैं, दो टीकाकरण कराते हैं, उनका हाइट वेट भी करते हैं और ब्लड की जांच भी करते हैं कि उनमें हीमोग्लोबिन कितना है, कि जिससे कि वो HRP ना हो। और उनको सही खाने की सलाह देते हैं कि उनको ताजी खाना खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए और मौसमी फल वगैरह सभी को खाने की उनको सलाह देते हैं हम जो है, और समय से टीकाकरण कराना चाहिए और पहले से अपनी डिलीवरी के टाइम की तैयारी करके रखनी चाहिए, अपने बच्चे के साफ कपड़े, अपना टीकाकरण, अपना दो तीन जो अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपोर्ट होती है वो सारी अपनी रिपोर्ट तैयार रखनी चाहिए, जिससे कि हमें डिलीवरी के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। और डिलीवरी के बाद हमें जन्म लेते ही अपने बच्चे को पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए, जो हमारे बच्चे के लिए एक अमृत का काम करता है, और 24 घंटे के अंदर अपने बच्चे को हमें BCG का टीका लगवाना चाहिए।
1: तो ये तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। अब हम बात करना चाहेंगे आपसे, जो कुपोषित बच्चे होते हैं तो उनकी पहचान आप कैसे करती है?
2: कुपोषित बच्चों की हम पहचान, उनका पेट बड़ा होता है, आंखें धसी हुई होती है और हाथ पैर बहुत पतले होते हैं, और वो अपने समय के अनुसार ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसके चलने फिरने में उसको दिक्कत होती है।
1: तो वो ठीक हो, पोषित हो जाए, उसके लिए क्या उनको सलाह देती हैं, क्या उनके लिए आहार मिलता है?
2: उनके लिए डबल राशन मिलता है हमारी तरफ से, और उनको हम आयरन सिरप देते हैं जो कि हफ्ते में दो बार हमको पिलानी होती है। तो हम उनको डॉक्टर को जाने की सलाह देते हैं, और जहाँ तक कि अगर ज़्यादा कोई गंभीर समस्या होती है, ज़्यादा कुपोषित बच्चा होता है, उसको हम NRC में भी भर्ती कराने की सुविधा है यहाँ पर जो है।
1: तो ऐसे आपके आंगनबाड़ी सेंटर पर भी कोई ऐसे बच्चे थे जो कुपोषित थे, फिर आपने उनकी पोषण आहार की व्यवस्था करी तो वो ठीक हो गए हो?
2: हाँ, ऐसा हुआ था, यहाँ पे दो तीन बच्चे ऐसे थे जो कुपोषित थे, और हम उनको राशन दिया था और उनको खाने की सलाह दी थी और उन्हें हॉस्पिटल में भी दिखाया था, तो वो बच्चे स्वस्थ हो गए थे।
1: अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो कहा यह जाता है कि अगर गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सही रहेगा तो कहीं ना कहीं जो पेट में पल रहा बच्चा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो उनके लिए आप क्या सलाह देती हैं, कैसे उनको खाना खाना चाहिए, खासकर जो गर्भवती महिलाएं और उसके बाद जो धात्री महिलाएं हैं?
2: धात्री महिलाओं को भी अपने समय से उनको 6 महीने तक आयरन कैल्शियम भी खाना चाहिए, और अपने खाने के साथ साथ उनको अतिरिक्त खाना भी खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, मौसमी फल वगैरह सभी ऐसी इस तरह की चीजें लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी दिन में कम से कम 2-3 घंटे तो आराम करना चाहिए, शुरू शुरू में ज्यादा भारी काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा जीना नहीं चढ़ना चाहिए, और अपने 3 महीने के बाद आयरन कैल्शियम खाना चाहिए, और हमारे पूरे 9 महीने के गर्भ के दौरान 2 टीके लगते हैं, वो टीके लगवाने चाहिए।
1: अच्छा, आप घर घर विजिट करने भी जाती होंगी, तो महिलाओं को क्या सलाह देते हैं आप?
2: यही सलाह देते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का ही दूध पिलाएं, घर का बना हुआ खाना खिलाएं, जो आंगनवाड़ी से अब ये राशन मिलता है उसको ताजा ताजा बनाएं और बच्चों को खिलाएं।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हम तक, यानी कि रेडियो के माध्यम से हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, खासकर हम उन्हीं को जागरूक करना चाहते हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं पोषण की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं, या टीकाकरण के प्रति वो जागरूक नहीं है, अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाते, पोषण का ध्यान नहीं रखते, तो उन सब तक ये जानकारी पहुंचाई और कहीं ना कहीं वो जागरूक होंगे, फिर अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखेंगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं, और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बता दें। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं, जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं, जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा, और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं, और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव, यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है, जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग, और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत अब हमारे साथ में है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सविता जी, उनसे हम बात करेंगे। तो बहन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो नौवां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हुआ है, तो क्या कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर आई हैं?
1: ये इसमें हमारे ऊपर आता है कि हम घर घर जाके महिलाओं को, बच्चों को, मतलब जो उन बच्चों की माताएं होती हैं, उनको समझाना कि अपने बच्चे को तुम्हें मतलब ज़्यादा गंदगी में नहीं रखना है, अपने आसपास साफ सफाई रखनी है और अपने बच्चे को खान पीन का मतलब पूरा पूरा ध्यान रखना है ताकि उनको ना पकड़े कोई बीमारी।
0: अच्छा, अक्सर देखा जाता है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चे भी होते हैं, अक्सर खून की कमी हो जाती है, तो क्या उनको आप सलाह देती हैं?
1: इसमें मतलब देखा जाता है कि जो ज्यादा कमजोर होते हैं, कहते हैं कि एनीमिया हो गई है, तो उनको जो है अपने बच्चे को, एक तो आयरन सिरप बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ना दोनों चीजें होती हैं, बच्चे का खून भी बढ़ता है और बच्चे के अंदर कैल्शियम की भी कमी नहीं होती है। और माँ के लिए भी आयरन कैल्शियम बहुत जरूरी, जरूरी नहीं है कि वो गर्भावस्था के टाइम ही खाएं उसको, वो अपने वैसे टाइम पे भी खा सकती हैं, बच्चा 1 साल का है या 2 साल का है उसमें भी खा सकती हैं। और गुड़ चना खाना चाहिए माताओं को।
0: अच्छा, देखा जाता है अक्सर महिलाएं परिवार में सबका तो ध्यान रखती हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं, खासकर खान पान का, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए?
1: हाँ, उसमें कई बार हो जाता है ऐसे कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने काम में इतनी व्यस्त होती हैं कि खाने पीने का टाइम ही नहीं होता उनके पास। तो हम तो यही सलाह देते हैं कि देखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए। जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो परिवार का कैसे रखोगे, कैसे तुम अपने बच्चे को स्वस्थ और मतलब पौष्टिक रख सकते हो उसे।
0: जरूरी है कि जो महिलाएं पहले अपना ध्यान रखें और तभी जो आने वाली पीढ़ी है वो स्वस्थ रहेगी। एक और योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, कौन पात्र है, क्या इससे लाभ मिलता है?
1: बिल्कुल, इसमें हम कहते हैं कि जो पहली गर्भवती होती है, जिसका पहला बच्चा होता है, देखिए उसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए लाभ है। और जो दूसरा लाभ होता है वो दूसरी बेटी होनी चाहिए। और ये वाला जो मातृवंदना का जो फार्म है वो सिर्फ 9 महीने तक भर सकता है, उसके बाद हम उसे नहीं भरवा सकते, नहीं भरा जाएगा वो। तो ये सरकार हमें जो पैसा देती है उसमें सिर्फ माँ के लिए देती है कि जिससे माँ खाए अच्छे से और उनको पौष्टिकता मिले और ताकि बच्चे को वो स्वस्थ कर सके।
0: तो कोई भी अगर महिला जो मातृ वंदना योजना का लाभ लेना चाहती है तो क्या पात्रता, क्या क्या उनके लिए दस्तावेज की आवश्यकता होती है?
1: हाँ जी बिल्कुल, उसमें हम बताते हैं कि देखिए, अगर आपकी पहली गर्भावस्था है तो आपको ये PMVY वाला फॉर्म भरवाना बहुत जरूरी है। तो उसमें हम कहते हैं कि एक तो उनका आधार कार्ड लगता है और उसमें ही उनका एक ईश्रम कार्ड होता है और एक उनका बैंक अकाउंट वाला होता है और एक होता है उनका जिससे उनका टीका लगता है, TD वाला टीका हो या फिर बच्चे वाला हो, बच्चा भी जब तक 9 महीने तक होता है तब तक हम PMVY वाला फॉर्म भर सकते हैं।
0: तो ये तो हो रही कि किस तरह से जो महिला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ उठा सकती हैं। अब बात करते हैं, जैसे आपका आंगनवाड़ी सेंटर है तो क्या कुछ यहाँ पर महिलाओं के साथ स्वास्थ्य चर्चाओं की बैठक भी होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: जी हाँ, इसमें हम मतलब अपने यहाँ पे जैसे एक होता है स्तनपान कराना, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, महिलाओं की एक बैठक होती है उसमें हम बिठा के यही सब समझाते हैं कि आपको अपने बच्चे को कैसे कैसे मतलब दूध पिलाना है और कैसे उनको स्वस्थ रखना है, किस किस कारणवश वो स्वस्थ रह सकते हैं, किस कारण बस वो अनस्वस्थ रह सकते हैं।
0: बहन जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और जरूर हमारे जो समुदाय के लोग हैं जागरूक होंगे। कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

0: आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है। इसका पूरा नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से किसान भाइयों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जो इस प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हमारे किसान भाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर हमारे किसान भाई अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्य फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमारे किसान भाई अपने नजदीकी बैंक में जाकर के अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर उनकी फसल का बीमा हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारे किसी भी किसान भाई के पास पहले से किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। और अब किसान मित्रों, बात करेंगे कि बीमा करवाने के बाद अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आपकी फसल नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसका मुआवजा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। और अब आप जानना चाहते हैं कि अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाती है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। साथ ही आपको अपनी जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन करने के कुछ दिनों बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी आपके खेत का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करते हैं और जब सब कुछ सही पाया जाता है तो किसान भाई के बैंक अकाउंट में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो इस तरह से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं बलराम

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बलराम बैसला से ये रागनी। अब बात करते हैं FPO की, यानी कि किसान उत्पादन संगठन की, जो किसानों द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संस्था है जिसका उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। ये एक पंजीकृत कानूनी संस्था है जो कृषि उत्पादों के सामूहिक एकत्रीकरण, इनपुट की थोक खरीद, बाजार तक सीधी पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से किसानों को अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने में मदद करती हैं। हमारे सीमांत और छोटे और भूमिहीन किसानों को FPO के रूप में एकत्रित करने से बाजार संपर्क बढ़ाने में मदद मिली है, जिससे हमारे किसानों की आय और आर्थिक मजबूती में सुधार हुआ है। ये संगठन छोटे किसानों को संपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही विपणन, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण और खेती के अन्य पहलुओं को कवर करते हैं। FPO छोटे किसानों को एक साथ जोड़ते हैं और एक कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होते हैं। वो अपने सदस्यों की उपज को इकट्ठा करते हैं और सामूहिक रूप से बाजार में बेचते हैं। ये संगठन कृषि आदानों की थोक खरीद करता है, साथ ही ये संगठन हमारे किसान भाइयों को ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना किसान उत्पादन संगठन यानी FPO के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र निमचाना से ये उपदेश। किसान मित्रों, खेत से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच करवाना बहुत जरूरी है। मिट्टी की जांच का मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के हिसाब से उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे कि उत्पादन बढ़े और साथ ही खेती में आने वाली लागत कम हो। किसान मित्रों, मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की जांच कराई जाए। स्वस्थ शरीर के लिए जिस तरह सही खान पान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, उनकी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। और इन पोषक तत्वों के बारे में हमें तभी पता चलता है जब हम अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं। उसी से ये बात सामने आती है कि हमारे खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है या फिर किन की अधिकता है, उसी के हिसाब से खेत में खाद का प्रबंधन किया जाता है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि खेत से भरपूर पैदावार के लिए मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी।

सुनील चौहान और उनके साथियों द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूँ सार, मिलिए डॉक्टर से, न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का

ये रोमांटिक प्रोग्राम महाभारत की अजीब कहानी कीचक बात आप चंदा केसिस में सुन रहे हैं। और देखिए अच्छे किस्से, अच्छी कहानियां, रोचक कथा आप सुनेंगे तो चंदा केसिस में। और दोस्तों नकली केसिस से सावधान, चंदा केसिस का निशान देखिए। और खास तौर से कोशिंदर की आवाज में ज्यादा से ज्यादा किस्से

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ।

0: मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रैवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊं। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
0: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है और लोगों से अपील करता है कि हम सबको मिलकर महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। यही एक वजह है कि स्मार्ट के सौजन्य से हम लोग मिलकर एक महिलाओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, या यूं कहें कि जागरूकता वाला कार्यक्रम हम आपके बीच पहुंचा रहे हैं। आज विषय है लैंगिक हिंसा। इस संबंध में बहुत सारी जानकारी हमारे पास हैं, तो धीरे धीरे शनि शनि ये जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी संबंध में आज हम चैप्टर 2 पर पहुंच चुके हैं, जिसका टाइटल है किशोर और लैंगिक हिंसा के बारे में आंकड़े हमें क्या दर्शाते हैं, आंकड़े दरअसल हमसे कहते क्या है। तो इसी संबंध में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत में लगभग 240 मिलियन किशोर जिनकी उम्र है 10 से लेकर 19 वर्ष, जो यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग है। किशोर की प्रगति और बेहतरी के मुख्य संकेत ये इशारा करते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिनका समाधान किया जाना अति आवश्यक है। इनमें से कुछ संकेतों में लैंगिक विसंगतियां गंभीर हैं, जनगणना के आंकड़े बच्चों के लिंगानुपात और जिनकी उम्र है 0 से लेकर 6 वर्ष उसमें सतत गिरावट दर्शाते हैं, और वहीं 2001 में प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियों की तुलना में 2011 में 914 लड़कियां रह गईं। इसके अलावा जन्म के एक महीने के बाद की अवधि में कन्याओं की मृत्यु जो है वो बहुत ज्यादा दर्ज की गई। अधिकांश देशों में जहां शिशु तथा बाल मृत्यु केवल जैविक रूप से चालित है, वहीं जन्म के प्रथम महीने के पश्चात पहले वर्ष के दौरान बालिकाओं की मृत्यु पुरुषों की मृत्यु की अपेक्षा कम है। हालांकि भारत में प्रसव पश्चात नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित प्रसवों पर 1 से लेकर 11 महीने आयु वाले बच्चों में मौतों की संख्या बालिकाओं के लिए 21 है, जबकि बालकों के लिए केवल 15 है। इसके अलावा उच्चतम संपत्ति वर्ग में माताओं से जन्म लेने वाले बच्चों के मामलों में प्रसव और उसके पश्चात नवजात मृत्यु में बालिका बालक अंतर सबसे कम है, लेकिन बालिकाओं की प्रतिकूल परिस्थिति समस्त संपत्ति वर्गों में प्रमाणित है। बाल मृत्यु दर जो कि 1 वर्ष आयु तक पहुंचने वाले प्रति 1000 बच्चों के सापेक्ष 1 से 4 वर्ष आयु वाले बच्चों में मौतों की संख्या, उसमें भी लैंगिक अंतरों का यही पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलता है। और समग्र रूप की अगर हम बात करें तो समग्र रूप में भारत में प्रति 1000 पर 23 के रूप में बालिकाओं की मृत्यु दर, प्रति 1000 पर 14 के रूप में बालकों की मृत्यु दर से 61% अधिक है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु में विवाहित हो जाने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगातार बहुत अधिक बना हुआ है, और समग्र रूप से 47.4% या प्रत्येक 2 में से 1 महिला बालिका वधु थी। सिर्फ आंकड़ों की जब हम बात कर रहे हैं तो आंकड़ों में भारत में 20 से 24 वर्ष आयु समूह की कुल महिलाओं यानी कि 2000 की जनगणना पर आधारित ये बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं, उसमें से 23 मिलियन से अधिक बालिका वधू पाई गई। लड़कियों के शीघ्र विवाह के परिणाम बहुआयामी होते हैं, जिनमें शीघ्र गर्भधारण, पोषण में कमी का अंतर, पीढ़ीगत हस्तांतरण, शिक्षा तथा आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सीमित अवसर आदि शामिल है, जिससे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये इशारा करने वाले साक्ष्य भी बढ़ रहे हैं कि 18 वर्ष से पूर्व विवाहित हो जाने वाली लड़कियों द्वारा घरेलू हिंसा का सामना किए जाने की संभावनाएं देर से विवाह वाली उनकी समकक्ष महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होती है। शीघ्र विवाह के हानिकारक कुप्रभावों की अगर हम बात करें तो उसके चलते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शीघ्र विवाह भारत में प्रति लाख जीवित प्रसवों पर 200 मौतों के ऊंचे मातृत्व मृत्यु अनुपात यानी MMR का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, जो कि विश्व में एक सर्वाधिक आंकड़ा है। यदि लड़कियां जीवित भी बच जाती हैं, तो उनके कुपोषित रहने की संभावना अधिक रहती है। 15 से 19 वर्ष की आयु की अधिक लड़कियां कुपोषित हैं। पूर्ण टीकाकरण के आंकड़ों से भी लैंगिक अंतर परिलक्षित होता है। जहां लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का पूर्ण टीकाकरण कराए जाने की संभावना कम रहती है, वहां वास्तव में NFHS1 और NFHS3 के दरमियान पूर्ण टीकाकरण के बारे में संकलित NFHS आंकड़ों से पता चलता है कि लैंगिक अंतराल न केवल बना रहता है बल्कि समय के साथ ये बढ़ता चला जाता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। आप कहीं जाएगा मत, हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए एक विशेष कार्यक्रम लैंगिक हिंसा के संबंध में एक खास जानकारी, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: देखो रामा ने गाना शुरू कर दिया, अब सारे बच्चों की भूख भाग जाएगी।

एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। हम बात कर रहे हैं महिलाओं पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम के बारे में, और इसी संबंध में आज का जो विषय है लैंगिक हिंसा। इसी के अंतर्गत अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बालिकाओं को समान स्पर्धा क्षेत्र उपलब्ध कराने, साथ ही उनके उत्तरवर्ती सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण एक प्रमुख क्षेत्र शिक्षा, जो कि शिक्षा हम सबके लिए वाकई बहुत जरूरी है। लड़कियों का माध्यमिक स्कूल नामांकन में भी लैंगिक असमानता स्पष्ट देखने को मिलती है। स्कूल वर्ष की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2006 में 6 से 17 आयु के 71% बच्चे स्कूलों में थे, नगरीय क्षेत्रों में 77% और ग्रामीण क्षेत्रों में 69%। हालांकि 6 से 17 वर्ष की केवल 66% लड़कियां स्कूलों में थी, जबकि इसी आयु वर्ग के लड़कों का प्रतिशत 75% था। 2005 से लेकर 2006 स्कूल वर्ष में स्कूल जाने वाले 6 से 17 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर 889 लड़कियों के रूप में था। वास्तव में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिंगानुपात में गिरावट दिखती है, और ये 6 से 10 आयु समूह में 957 से 11 से लेकर 14 आयु समूह में 884 और फिर 15 से लेकर 17 आयु समूह 11 से लेकर 14 आयु समूह में 884 और फिर 15 से लेकर 17 आयु समूह में केवल 717 तक पहुंच जाता है। हालांकि 15 से लेकर 17 आयु समूह के बच्चों में स्कूलों की उपस्थिति के आंकड़े जो हैं लड़कियों और लड़कों दोनों के मामले में कम है, लेकिन इस आयु में लड़कों की तुलना में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि बहुत अधिक है। हालांकि आयु के आधार पर स्कूल उपस्थिति के आंकड़ों का एक परीक्षण ये प्रकट करता है कि स्कूल उपस्थिति में लैंगिक असमानता व्यापक रूप से एक ग्रामीण परिघटना है। शहरी क्षेत्रों की मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक आयु वर्ग में स्कूल जाने वाले लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है लगभग समान है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल उपस्थिति में लैंगिक असमानता प्रत्येक आयु वर्ग में परिलक्षित होती है, और ये आयु बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती है। शहरी क्षेत्रों में 15 से लेकर 17 आयु वर्ग के केवल लगभग आधे बच्चे ही स्कूल जाते हैं, जिनमें लड़कियां लड़कों से कम हैं। अब बात ये सामने आती है कि देश में बड़ी तादाद में महिलाओं के लिए घूमने फिरने यानी कि आवाजाही की स्वतंत्रता में गंभीर कटौती की जाती है। हालांकि युवा किशोरियों के मामले में प्रतिबंध बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि बहुत कठोर है। लड़कियों के मामले में ये काफी मायने रखता है, क्योंकि आवागमन में वृद्धि महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रमुख संकेतक है। कुल मिलाकर यूं कहें कि 15 से लेकर 49 आयु समूह की केवल एक तिहाई महिलाओं को ही अकेले बाजार जाने, स्वास्थ्य केंद्र पर जाने और समुदाय से बाहर जाने की इजाजत यानी कि अनुमति मिल पाती है, और इसके विपरीत युवा महिलाओं के मामलों में ये प्रतिशत और भी कम हो जाता है, जहां 15 से लेकर 19 आयु वर्ग की केवल 12.8% महिलाओं को ही 3 स्थानों पर जाने की अनुमति होती है, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जबकि 20 से लेकर 29 वर्ष की महिलाओं के लिए 28% है। आयु के अलावा वैवाहिक स्थिति भी एक खास चर्चा का विषय है। युवा और सर्वदा अविवाहित महिलाओं को आवाजाही की सबसे कम आजादी होती है, या यूं कहें स्वतंत्रता होती है। जिनकी उम्र 40 तक पहुंच जाती है उन महिलाओं में भी केवल लगभग आधी महिलाओं को ही इन तीनों स्थानों पर अकेले जाने की अनुमति होती है, जिसके बारे में हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं। जबकि लड़कों के लिए रोजगार प्राप्त करने या किसी अन्य के लिए कार्य करने की संभावना लड़कियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है। रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि घरेलू हिंसा के पीड़ितों द्वारा कई प्रकार के विपरीत जनसांख्यिकीय, प्रजनन संबंधी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों का अनुभव करने की संभावना पर बहुत प्रबल प्रभाव पड़ता है। हिंसा से स्वतंत्रता न केवल स्वयं में स्वास्थ्य लक्ष्य है, बल्कि ये महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति के लिए भी महत्वपूर्ण है, और खास बात यह कि ये व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए

महत्वपूर्ण जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि 28% युवा महिलाओं द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया जाना पाया जाता है। और बात सामने ये भी आती है कि शारीरिक और यौन हिंसा का दायरा शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा है और हर प्रकार की हिंसा का प्रचलन किशोर की तुलना में अधिक आयु के युवा लोगों में, साथ ही कभी कभी विवाहित न होने वाले लोगों की तुलना में कभी विवाहित महिलाओं में अधिक है। और आंकड़े कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश घरेलू हिंसा पतियों द्वारा उनकी पत्नियों के विरुद्ध की जाती है। कुल मिलाकर कभी विवाहित 37% युवा महिलाओं ने अपने जीवन साथी की ओर से शारीरिक, यौन या यूं कहें कि भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया है। इसके अलावा किशोर के लिए स्वास्थ्य चुनौतियों में प्रजनन मार्ग संक्रमण यानी RTI, साथ ही HIV सहित यौन संचारित संक्रमण शामिल है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 से लेकर 19 आयु समूह में केवल 18.6% महिलाओं, साथ ही साथ 34.5% पुरुषों को ही HIV एड्स के बारे में पूरी जानकारी थी। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है। स्मार्ट की सौजन्य से आप सुन रहे हैं एक खास जानकारी महिलाओं के ऊपर और विषय है लैंगिक हिंसा। इसी के संबंध में जो आंकड़े हमें बता रहे हैं वो आंकड़े मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ स्मार्ट के सौजन्य से महिलाओं पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का जो विषय है लैंगिक हिंसा। इसी संबंध में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें और भी होना बाकी है, और इसी संबंध में आंकड़े क्या कहते हैं वो आंकड़े मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब बात आगे बढ़ती है तो बात सामने आती है कि भारत में किशोर वय की आयु के अनुसार स्तरीकृत आंकड़ों का अभाव है। पॉपुलेशन काउंसिल द्वारा भारत में 10 से लेकर 19 वर्ष आयु के किशोर वय की जरूरतों के बारे में एक हालिया साक्ष्य डेस्क सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 10 से लेकर 14 वर्ष आयु के अपेक्षाकृत छोटे किशोर वय के बारे में शिक्षा को छोड़कर अन्य विषयों पर प्रकाशित साक्ष्य बहुत कम है, या यूं कहें कि नहीं है। इसके अलावा अधिकांश उपलब्ध साक्ष्य युवाओं को 15 से 24 आयु वर्ग श्रेणी में रखकर बनाए गए हैं, और आयु स्त्रीकृत आंकड़े की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है। साथ ही 10 से लेकर 19 आयु वर्ग के किशोर वय के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, जबकि ये विशेष प्रकार के शारीरिक साथ ही भावनात्मक परिवर्तनों के कारण बहुत महत्वपूर्ण आयु समूह होता है। बात सामने आती है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध। इसी संबंध में बात निकल कर ये आ रही है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रिपोर्टिंग भारतीय दंड संहिता तथा विशेष और स्थानीय कानून, इसी में बात निकल कर ये आई है कि 2012 की तुलना में 2013 में 26.7% की वृद्धि दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश, जहां देश की महिलाओं की जनसंख्या का 7.3% भाग है, उसकी 2013 में अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध किए गए कुल अपराधों में से उसकी 10.5% की हिस्सेदारी रही है। और वहीं 2013 में महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों की दर 52.2 थी। वर्ष 2013 के दौरान दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा अपराध हुए, जहां की 52.2 की राष्ट्रीय अपराध दर के मुकाबले 146.0 की दर रही। और याद रखने लायक जो बिंदु हैं, जो खास बातें वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग किशोर वय का होने के कारण इसे जननांकीय के रूप में लाभप्रद स्थिति में कहा जाता है, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण लैंगिक असमानताएं मौजूद हैं जिनका समाधान किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, या यूं कहें कि अति आवश्यक है। दूसरी बात, बालिकाएं और किशोरियां जीवन के सभी स्तरों पर विशेष रूप से वंचित हैं। घटता लिंगानुपात, स्कूलों में कम उपस्थिति, आवाजाही पर प्रतिबंध, रोजगार के अपेक्षाकृत कम अवसर, साथ ही यौन हिंसा के प्रति असुरक्षा। अगला पॉइंट है, 2013 में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराधों की संख्या में 26.7% की बढ़ोतरी पाई गई, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली में अपराधों की दर सबसे अधिक पाई गई। तो इन बातों का, इन आंकड़ों का यहाँ आपसे डिस्कस करने का मतलब मकसद यही है कि हम अगर इसी तरीके से चलते रहे और यूं ही आंकड़े बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं जो अनुपात है वो अभी भी गड़बड़ाया हुआ है, और कहीं ज्यादा ना गड़बड़ाया जाए। इसलिए लड़कियों को शिक्षा के लिए बाहर निकलना चाहिए। जिस तरीके से आजादी की बात होती है हम सब के लिए, तो महिलाओं की भी बात होनी चाहिए, बच्चों की भी बात होनी चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि जिस तरीके से अभिभावक अपने बच्चों पर नजर रखते हैं, उनके बारे में जानना समझना जरूरी है कि आप कहाँ थे, कैसे थे, और आप हमें बताकर जाएं, हमसे आप कुछ ना छुपाएं। तो ये बातें घर की हैं, या यूं कहें कि संस्कारों की बातें, जो कि अगर आप अपने माता पिता से साझा कर जाएंगे तो वो भी निश्चिंत रहेंगे और आपके बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं होंगे। हाँ, मेरा बच्चा वहां मुझे बताकर गया है, मेरी बच्ची वहां मुझे बताकर गई है। तो हमारा और आपका भी फर्ज बनता है कि हम अपने अभिभावकों को भी बताकर चलें, उनको साथ लेकर चलें कि हम कहाँ हैं, यानी कि आजादी का आप और हम गलत फायदा भी ना उठाएं।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग,

0: यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब जिसे हम कहते हैं मूत्र, अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमा

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: भाभी लो मिठाई खाओ।
2: अरे किस खुशी में?
1: ओ, सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
2: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
1: ओहो भाभी, रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
2: अनीमिया?
3: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: ललिता लो मिठाई खाओ।
1: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
4: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: 90.8 FM। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और खूब सारा लाड़ दुलार, खूब सारा प्यार। हमने इस कहानी में, जिस कहानी का शीर्षक था अधिक बलवान कौन, कहानी में हमने यह जाना कि हवा और सूरज के बीच शर्त लग गई, बहस छिड़ गई कि उनमें से अधिक बलवान कौन है। हवा ने कहा कि जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही सबसे अधिक बलवान ताकतवर होगा। तो समझ में आने लगा कि हवा तो आदमी का कोट उतरवा नहीं सकी। जब हवा बहुत तेज चली तो आदमी ने दोनों हाथों से अपना कोट पकड़ लिया और कोट के बटन बंद कर लिए। तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता था कि आदमी कोट उतार दे। लेकिन सूरज में बहुत गर्मी होती है और सूरज बहुत तेज तपने लगा और गर्मी की वजह से आदमी ने अपना कोट उतार दिया और कौन जीता? सूरज। तो सूरज जीत गया और उसने ये साबित कर दिया कि वह हवा से ज्यादा ताकतवर है। तो बच्चों, अब ये बताओ को इनमें से कौन अधिक बलवान लगता है? लेकिन साथ में यह भी बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये अधिक बलवान है। हमारा पहला सवाल है सूरज या हवा। आपको सूरज और हवा में से सबसे अधिक बलवान कौन लगता है, सूरज या हवा? क्यों लगता है? कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें सूरज ज्यादा बलवान लगता है। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि सूरज में गर्मी होती है और सूरज बहुत सारे काम करवा लेता है। वह पेड़ पौधों को सुखा भी सकता है, लोगों के कोट उतरवा सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि बादल सूरज को ढक लेगा तो सूरज की तपिश, उसकी तपन, उसकी गर्मी बिल्कुल काम नहीं आएगी और तब पर हो जाएगी। और जब हवा बहुत जोर से चलती है तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। पेड़ इधर से उधर झूलने लगते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं। जिनके घर छप्पर के होते हैं, कच्चे होते हैं, छप्पर उड़ जाते हैं, तो हवा के बहुत तेज चलने पर ये सब होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके विचार से हाथी ज्यादा बलवान है या शेर? बच्चे कहेंगे कि हाथी ज्यादा बलवान है। लेकिन क्यों? वे कहेंगे कि हाथी इसलिए बलवान है क्योंकि वह बहुत बड़ा है। बिल्कुल ठीक। का वजन बहुत ज्यादा है, ये बात भी ठीक है। और वह शेर को अपनी सूंड में लपेट कर पटक लगा सकता है, यानी पटक नहीं दे सकता है। और ये तो आपने बहुत बार सिनेमा में देखा होगा, बहुत बार टीवी में देखा होगा कि हाथी अपनी सूंड में शेर को लपेट सकता है और उसे उठाकर पटक सकता है। तो जब हाथी शेर को पटकेगा तो शेर का तो कचुम्बर निकल जाएगा, उसकी हड्डी पसली सब एक हो जाएगी। तो इसलिए कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हाथी और शेर में से हाथी ज्यादा बलवान है, ज्यादा ताकतवर है। इन कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं हाथी और शेर में से शेर ज्यादा बलवान है, शेर ज्यादा ताकतवर है। तो फिर मैंने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है? तो पता है बच्चों उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देखिए उषा दीदी, हाथी भले ही बहुत मोटा है, वजनदार है, लेकिन सबसे ज्यादा फुर्तीला कौन है? वो तो शेर है। कभी हाथी और शेर में दौड़ लगी, यानी कि दोनों में कभी रेस लगी, तो कौन जीतेगा, हाथी जीतेगा या शेर? बच्चों के इस सवाल से तो मुझे भी चक्कर आने लगा कि ये बात तो सही है कि हाथी उतनी तेज गति से नहीं दौड़ सकता जितनी तेज गति से शेर दौड़ सकता है। यानी कि जब शेर अपना शिकार करता है तो बहुत फुर्ती से वह दौड़ता है और झपट लेता है अपने शिकार को और सीधा गर्दन पे वार करता है, कभी पैरों पर वार करता है। कुछ बच्चे जब ये कहते हैं कि हाथी और शेर में से शेर बलवान है तो उनकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस बात के लिए ये तर्क भी दिया है। तो बच्चों, अब हम शेर की हाथी की बात से कुछ और हटकर बात करते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गर्मी या सर्दी में से अधिक बलवान कौन है, बच्चे कहेंगे कि गर्मी अधिक बलवान है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर्दी अधिक बलवान है, और मैं कहूंगी कि आप ये बताइए कि आप जब गर्मी को बलवान कहते हैं तो क्यों कहते हैं, और जब आप सर्दी को बलवान कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ना क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। जो बच्चे गर्मी को अधिक बलवान मानते हैं वे ये कहते हैं कि जब गर्मी बहुत आती है तो लोग अक्सर पसीने पसीने हो जाते हैं, दिन भर वे पानी में रहते हैं, स्नान करते हैं, शरबत पीते हैं, तो गर्मी में तो वो ताकत है उनके कोट उतरवा देती है। जो बच्चे सर्दी को ज्यादा ताकतवर कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर्दी जब आती है तो हमें गर्मी लगती ही नहीं है। ये क्या बात हुई? हाँ, ये बात तो अच्छी सी लगी कुछ, कि जब सर्दी आती तो गर्मी भाग जाती है। तो ये बात तो हम गर्मी के लिए भी कह सकते हैं कि जब गर्मी आती है तो सर्दी भाग जाती है। फिर बरसात बीच में कहेगी, आप दोनों बलवान नहीं है, बलवान मैं हूँ, क्योंकि मेरे आने से गर्मी रहती है और ना सर्दी रहती है। जुगत तो बहुत मजेदार है। गर्मी और सर्दी में ये बहस छिड़ गई कि उनमें से कौन अधिक बलवान है, तो बीच में आके टपकी और उसने कहा कि आप दोनों में से ज्यादा बलवान मैं हूँ, क्योंकि मेरे होने पर लोगों को ना तो गर्मी लगती है और ना ही सर्दी लगती है। कि आज ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनके बारे में आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है। अरे, आस तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, चींटी है, सांप है, छिपकली है, बिल्ली है, कुत्ता है, चूहा है, तो बताइए कि चूहे और बिल्ली में से कौन ज्यादा ताकतवर है। ओ, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि उषा दीदी, बिल्ली ज्यादा ताकतवर है, लेकिन क्यों? अरे भाई, इसलिए क्योंकि बिल्ली बड़ी है और चूहा छोटा है। और अगर मैं ये कहूं कि अगर मान लीजिए कि भूकंप आ जाए या फिर कुत्ता आ जाए, तो सबसे पहले कौन दौड़ लगाएगा, बिल्ली या चूहा? तो सब कहेंगे कि दोनों दौड़ लगाएंगे, लेकिन अपने आप को बचा सकता है कि वहां तक कुत्ता ना पहुंच सके, तो फिर बच्चे कहेंगे कि बिल्ली तो मेज के नीचे छिप जाएगी, तो फिर मैं कहूंगी कि कुत्ता भी मेज के नीचे पहुंच जाएगा, फिर आप कि बिल्ली पलंग के नीचे छिप जाएगी, तो मैं कहूंगी कि कुत्ता पलंग के बाहर पहरा देने लगेगा, और बिल्ली कब तक वापस नहीं आएगी या बाहर नहीं आएगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो चूहा है, ये चूहा झटपट अपने बिल में चला जाएगा, यानी कि जमीन में दीवार के कोनों में जरा सा छेद होता है और चूहा अपना बिल बना लेता है, और चूहा अपने बिल में आराम से रहेगा, तो उसका घर है, अपने घर में जाकर आराम से रहेगा। अब चाहे कुत्ता उसके बिल के बाहर चौकीदारी करे या पहरेदारी करे, उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि छोटे से छेद में कुत्ता तो क्या, उसकी पूंछ भी नहीं आ सकती, इन चूहा जरूर अपने बिल में छुप सकता है। इसलिए चूहे और बिल्ली में से या चूहे और कुत्ते में से कौन अधिक बलवान हुआ, तो फिर चूहा अधिक बलवान हुआ। तो अब हम बात करते हैं ताकत की। सबको पौष्टिक भोजन करना चाहिए ताकि हमें ताकत मिल सके। तो बात जब ताकत की आई है, तो आप अपनी ताकत कैसे दिखाते हैं? कोई आपसे कहे कि नंदू, आप बहुत ताकतवर हैं, ये साबित करके बताइए, तो नंदू भला क्या करेंगे? नंदू कहेंगे कि देखिए, मैं अपना बस्ता उठा सकता हूँ, तो बस्ता तो हल्का है। तो नंदू ने कहा कि नहीं, बस्ता हल्का नहीं है, तो अगर हम बस्ता छोड़ दें तो देखिए, मैं कुर्सी उठा सकता हूँ। तो फिर हम कहेंगे कि ये तो प्लास्टिक की कुर्सी है। दू ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं लकड़ी की कुर्सी उठा सकता हूँ, मैं ये किताब उठा सकता हूँ। तो नंदू दरअसल तरह तरह की चीजों को उठाकर अपनी ताकत साबित करते हैं। तो बच्चों, हम अपनी बहस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ताकत की। ताकत की बात आई है तो बहुत सारे बच्चे अपने घरों में ये कहते होंगे, देखो मैंने आज 2 रोटी खाई और मैं कितना ताकतवर बन गया। तो बच्चों को ताकतवर बनने के लिए पौष्टिक भोजन करना बहुत जरूरी है। जंक फूड से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें ताकत नहीं मिलती बल्कि वह हमें आलस से पैदा करता है। तो हुआ यूं, एक दिन नंदू के घर में नंदू की बहस छिड़ गई नंदू की बहन से। तो नंदू की बहन ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। नंदू ने कहा, नहीं नंदिनी, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। इन दोनों की बहस, यानी कि नंदू और नंदिनी की बहस को सुन रहे थे उनके दादाजी। दादाजी ने कहा, बच्चों इधर आओ। दोनों बच्चे दौड़कर दादाजी के पास पहुंच गए। उन्हें लगा कि दादाजी उन्हें चॉकलेट देने वाले हैं या फिर टॉफी देने वाले हैं, लेकिन दादाजी ने बच्चों को ना तो चॉकलेट दी और ना ही टॉफी दी। दादाजी ने बच्चों से क्या कहा कि देखो बच्चों, शरीर की ताकत अलग बात है लेकिन दिमाग की ताकत अलग बात है। अब ये बताइए कि अगर आप सड़क पार कर रहे हैं, ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि सड़क के उस तरफ से एक व्यक्ति आ रहा है जिन्हें दिखाई नहीं देता, जो दृष्टिहीन है, दिव्यांग है, तो और आपको लगता है कि उन्हें भी सड़क पार करनी है, लेकिन वे ये नहीं जान पाएंगे कि उनके आसपास की कारें, वाहन कितनी तेजी से सड़क पर दौड़ रही हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो नंदिनी और नंदू दोनों सोचने लगे कि वे क्या करेंगे। तो नंदिनी ने कहा कि हम उनके पास जाएंगे और उनका हाथ पकड़कर हम उन्हें सड़क के इस तरफ ले आएंगे। तो नंदू ने कहा कि हम मैं भी सड़क के उस तरफ जाऊंगा, उन व्यक्ति के पास पहुंचूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले उनसे पूछूंगा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, पता वे किसी का इंतजार कर रहे हो या क्या पता उन्हें सड़क पार करनी हो। सबसे पहले मैं उनसे यह पूछूंगा कि अंकल आप यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या आपको सड़क पार करनी है, तब मैं ये निर्णय लूंगा कि मुझे उन्हें सड़क पार करवानी है या नहीं करवानी, या जब वे किसी का इंतजार कर रहे हैं तो उनके आने तक मैं उनके साथ रहूं। दादाजी ने कहा, देखा ये होता है बुद्धि का बल। मान लीजिए कि उन्हें सड़क पार करनी ही नहीं थी और हमें यूं देखकर लगा कि उन्हें सड़क पार करनी है, तो हमने उनकी मदद करने की बजाय उनकी मुसीबत बढ़ा दी। तो पहले पूछ लें, पूछ कर ही काम करें। पानी में आपने देखा था कि हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, वह बहुत जोर से चली, और सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, वह तपता चला गया, और दोनों ने अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी ताकत दिखाई। अच्छा बच्चों, अब अगर आपसे कोई यह पूछे कि पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा, तो सारे बच्चे कहेंगे जो सूरज ने किया, जो हवा ने किया, यानी पानी भी जोर जोर से बरसने लगेगा, तो ये उसकी ताकत है। तो फिर बादल क्या करेगा? बादल जोर जोर से गर्जना करेंगे, गर्जेंगे और फिर बरस जाएंगे। तो फिर पहाड़ अपनी ताकत कैसे दिखाएगा? पहाड़ अपनी ताकत कैसे दिखाएगा, ये तो बहुत मुश्किल सा सवाल पूछ लिया। पहाड़ अपनी ताकत हिलकर दिखा सकता है कि जब लैंडस्लाइडिंग होती है, यानी कि पहाड़ खिसकता है तो बहुत नुकसान होता है, तो पहाड़ अपनी ताकत यूं दिखा सकता है। और सर्दी अपनी ताकत कैसे दिखाएगी? ये सवाल तो बहुत आसान है। सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए खूब ठंड पैदा करेगी और लोग बहुत सारे कपड़े फोड़ लेंगे। ये सारी चीजें अपने अपने हिसाब से अपनी ताकत दिखा सकती हैं। बच्चों मान लो कि अगर हवा ने कहा होता कहानी में कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो कहानी में आगे क्या होता? ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। कहानी को बनाने की जिम्मेदारी आप बच्चों की है। आप बच्चे इस कहानी को अपनी कल्पना से लिखिए, बनाइए और हमारे पास भेजिए। तो कहानी में करना क्या है, एक बार दोहरा लेते हैं। मान लो कि हवा ने कहा कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो कहानी में क्या होता। को झटपट अपनी एक कहानी बनानी है, खूब मजेदार कहानी बनानी है और हमारे पास भेजना है। हमारे पास पहुंचने का पता क्या है, पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। बस आप इस ईमेल आईडी पर अपनी बनाई हुई कहानियां हमारे पास भेज दीजिएगा। और ताकत की चली है तो भाषा में भी बहुत ताकत होती है। भाषा में शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, बात होती है, तर्क होते हैं, कल्पना होती है, अनुमान होता है, तो भाषा के पास भी अपनी बहुत ज्यादा ताकत है। तो शब्दों में जो ताकत है वह क्या ताकत है कि शब्द में जो अक्षर आते हैं अगर हम उन्हें आगे पीछे कर दें तो कुछ ही अक्षरों से बहुत सारे नए शब्द भी बन जाते हैं। ये ताकत होती है भाषा की। जैसे हम एक शब्द सुनते हैं, ताजमहल। दोबारा सुन लें, ताजमहल। अब इस ताजमहल में कौन कौन से अक्षर हैं? है, शाबाश, ज, म, ह और ल। तो ताजमहल में पांच अक्षर हैं, ता, ज, म, ह, ल। इन अक्षरों को एक खास क्रम में जब रखते हैं तो एक शब्द बनता है ताजमहल। शब्दों की ताकत आपको देखनी है और शब्दों की ताकत आपको बतानी है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम इन्हीं अक्षरों को आगे पीछे जोड़ तोड़ कर कुछ और नए शब्द बनाएंगे। जैसे ताज, जैसे महल, जैसे जम, से हल, अल, मल। तो यानी हमने ताज महल में जितने अक्षर आए हैं उन अक्षरों को जोड़ जोड़ कर छह और नए शब्द बना दिए। आप इससे ज्यादा और शब्द बना सकते हैं, कोशिश करके देखिएगा। तो आपको अपनी भाषा की ताकत साबित करने के लिए क्या करना है, चुनौती हम आपके लिए लेकर आए हैं और मुझे मालूम है कि सारे बच्चे इस चुनौती में खरे उतरेंगे। तो आपके लिए एक शब्द है कमल ककड़ी। तो बच्चे अपनी कॉपी में झटपट से ये शब्द लिख लीजिए, कमल ककड़ी। तो जब हम कमल ककड़ी लिख रहे हैं तो हमने क्या लिखा, अ म ल क क ड़ी। तो इसमें कितने अक्षर हैं, कमल ककड़ी में है छह अक्षर, क म ल क क ड़ी। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपनी भाषा की ताकत दिखानी है। हम क्या करेंगे, हम इन अक्षरों को जोड़ तोड़ कर एक अलग खास क्रम में रखते हुए बहुत सारे शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। शब्द मैं कह देती हूँ और एक शब्द आप कह दीजिएगा, तो शुरू करें। तो आप ये कहेंगे कि उषा दीदी हर बार आप खुद से शुरू करती हैं। तो लीजिए साहब, आपकी शिकायत हम दूर करते हैं, तो सबसे पहले हम आपसे ही शुरू करते हैं। आपने हमें शब्द बताया कमल, शाबाश। मेरा शब्द है ककड़ी, आपका शब्द है कल और मेरा शब्द है मल। आपका शब्द है लकड़ी, तो लीजिए साहब मेरा शब्द है मकड़ी। आपका शब्द है कम और मेरा शब्द है कड़ी। मजा आया? तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपकी अपनी किताब में, अपने आसपास अखबार में है, बस आपको उन शब्दों को छांटना है। अपनी पसंद के शब्द छांट लीजिए और उस शब्द में जो अक्षर आए हैं उन्हें जोड़ तोड़ कर यानी कि एक खास क्रम में रखते हुए, आगे पीछे रखते हुए नए शब्द बनाइए। और शब्द ऐसे बनने चाहिए जिनका अपना कोई अर्थ हो। हम ये कह सकते हैं कि कल का क्या मतलब है, तो कल के दो अर्थ हैं, एक कल जो बीत गया और एक कल जो आने वाला है। और कम का क्या मतलब है? कम का मतलब है जो चीज बहुत कम होती है, थोड़ी सी होती है, उसे हम कम कहते हैं। और आप पूछेंगे कि कड़ी का क्या मतलब है? कड़ी कहते हैं सांकल को। बहुत पुराने जमाने में घरों में ताले नहीं लगते थे, सांकल लगती थी। दरवाजा बंद किया और दरवाजे के पीछे एक लकड़ी का फट्टा लगा देते थे और एक सांकल, जिसे हम कहते हैं कुंडी। तो कुंडी है, कड़ी है, सांकल है, ये एक ही अर्थ को देते हैं। तो आपको बस यही करना है, आपको अपने पसंदीदा शब्द लेने हैं और उनसे नए शब्द बनाने हैं। जैसे एक शब्द हम कहते हैं तालाब, तो इससे कौन सा शब्द बन सकता है? यह शब्द बन सकता है ताला। तो तालाब में क्या है? ता, ला और ब। तो हमने एक नया शब्द इसमें से बनाया, ताला। और एक और शब्द बन सकता है बला। ठीक, तो बस ऐसे ही आप झटपट बहुत सारे शब्द खोजिए और शब्द बनाइए। शब्दों की ताकत की बात चली है तो फिर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एक ही अर्थ देते हैं, या यूं कहिए कि एक अर्थ के लिए हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। तो बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो यह बताइए कि अधिक शब्द के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? कहेंगे अधिक के लिए हम ज्यादा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा सवाल होगा कि वह भला कैसे? इतनी आसानी से हम आपको जाने नहीं देंगे। फिर नंदू ने एक वाक्य बनाया। नंदू ने कहा कि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। तो मैंने कहा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अधिक की जगह हम ज्यादा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फायदा की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? फायदा शब्द की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाभ। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या लाभ होगा? अगर नंदू के पास 2 रुपए हैं और उसके चाचा जी ने 2 रुपए और दिए, तो नंदू के पास हो गए 4 रुपए। तो नंदू को कितने रुपए का फायदा हुआ? 4 रुपए का। तो नंदू को कितने रुपए का लाभ हुआ? 4 रुपए का। तो फायदा के लिए हम जो दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वह शब्द है लाभ। पर शब्द है, और यह शब्द अक्सर हम अपने कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं। कुछ याद आया? दिमाग की ताकत तो आपके पास बहुत है। और यह शब्द है नमस्कार। नमस्कार की जगह हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? नमस्कार की जगह हम दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं प्रणाम, नमस्ते। शरीर की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? शरीर शब्द की जगह हम और जो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वह हो सकता है तन और बदन। झगड़ा के लिए क्या होगा? झगड़ा के लिए तो मुझे कोई शब्द सूझ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं झगड़ा करती नहीं हूँ, तो मेरे पास झगड़ा के लिए कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। लेकिन ये नंदनी बहुत झगड़ा करती है और वह भी बार बार पे नंदू से झगड़ लेती है। तो नंदिनी ने कहा कि झगड़ा की जगह हम लड़ाई शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। झगड़ा और लड़ाई तो न करें, लेकिन हाँ शब्दों का जरूर पता हो। और हमारे पास अब आपके लिए एक अंतिम शब्द है, और वह शब्द है सर्दी। तो सर्दी की जगह हम क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? सर्दी की जगह हम कह सकते हैं ठंड या फिर शीत। दोनों में से आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारा काम किया, ताकत की बात की, शब्दों की बात की, कहानी की बात की, और हमने यह भी देखा कि शब्दों में कितनी ताकत होती है, अक्षरों में कितनी ताकत होती है। अगर वे सही ढंग से मिल जाएं तो बहुत सारे नए और सार्थक शब्द बना सकते हैं। आपने शब्दों का काम किया और हमने भी आपको शब्दों से ही जुड़ा हुआ एक काम करने के लिए कह दिया। लेकिन सारे बच्चे अपनी कहानी भेजना मत भूलिएगा। हम आपकी कहानी की प्रतीक्षा करेंगे। और इंतजार कहाँ करेंगे? इंतजार करेंगे इस पते पर। हमारा ईमेल आईडी है earlyliteracy.ncert@gmail.com। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पर अपनी कहानी जरूर भेजिएगा। कहानी क्या भेजनी है? कहानी तो ये भेजनी है कि मान लो अगर हवा ने कहा होता कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ देगा वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो बताइए कहानी में क्या होता। मैं आप सब की कहानी की प्रतीक्षा कर रही हूँ और इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते।
0: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
5: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
4: क्या है राज?
5: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
6: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें।

निकले, दरवाजा जांचे। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोले। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर

0: लगाकर अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहां पहले एक दिन में कई गोलियां लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियां ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयां दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

धरती मेरी धरती। लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 23वीं कड़ी धरती का अमृत। श्रोताओ, पिछले भाग में आपने जाना कि हमारी पृथ्वी का आधा भाग लगभग हर समय बादलों से घिरा रहता है। बादलों को उनके आकार और ऊंचाई के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। धरती पर कोहरा कैसे बनता है और कितने प्रकार का होता है, तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 23वीं कड़ी

0: सृष्टि, मानव की तो आदत ही हो गई है पानी व्यर्थ बहाने की। अकेला इतने पानी से नहाता है जितने में चार आदमी नहा ले। मानव बाहर निकलना,
1: पानी की कमी चल रही है और ये मानव है कि समझता ही नहीं। अरे
2: सुनो सुनो सुनो, तुम सब मानव के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे आराम से नहाने दो उसे।
1: हाँ अभी मानव की तरफ तारी करने लग गए।
2: अरे बेटा वो
1: आपको मानव को समझाना चाहिए ना कि पानी इतना बर्बाद ना किया।
0: और वैसे भी अब नल में रोज पानी नहीं आता,
1: और जिस दिन नल में पानी आता है उस दिन भी पानी इतना कहाँ आता है कि हमारी सभी पानी की जरूरतें पूरी हो सके।
3: वो तो विवेक भैया है कि चौराहे वाले नलकूप से पानी लाकर जमा करते रहते हैं, वरना मानव इसको तो नहाने का तो छोड़ो मुंह धोने का भी पानी ना मिले।
0: पर सृष्टि अब चौराहे वाले हैंडपंप में पानी काफी कम हो गया है, अब कैसे होगा?
1: तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी।
2: अरे वसुधा, वैसे भी हर साल इन दिनों में पानी की कमी हो ही जाती है।
3: पापा क्यों ना हम अपने यहाँ ट्यूबवेल लगवा लें।
1: हाँ बिल्कुल, अब तो ट्यूबवेल लगवाना ही होगा।
3: अरे दीदी आप नहाने की बड़ी जल्दी मचा रही थी ना, आप जाओ ना नहाने के लिए, गप्पे क्यों लगा रही हो बैठी हुई यहाँ पर?
0: मानव सृष्टि गप्पे नहीं लगा रही, वो तो बाथरूम से तेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी।
3: ओहो, ये मानव तो नहाने में भी आधा घंटा लगाता है और नहाता भी है तो दो बाल्टी से। अरे दीदी मैं पानी फालतू थोड़ी बहाता हूँ, नहाने में दो बाल्टी तो लग ही जाती है।
2: बेटा देखो एक बात तो है, जब हम एक बाल्टी पानी से अच्छी तरह से नहा लेते हैं तो फिर तुझे दो बाल्टी पानी क्यों चाहिए?
3: अरे पापा मैं ये सब नहीं जानता, पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पानी बहाता नहीं बल्कि नहाने में उपयोग करता हूँ।
1: जो भी हो बेटा, पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपनी आदतों में परिवर्तन तो करना ही होगा ना।
3: वैसे मम्मी कितनी अजीब बात है ना कि धरती के 3/4 भाग पर पानी भरा है फिर भी मुझको सिर्फ एक बाल्टी पानी से नहाना पड़ेगा। लेकिन मानव तुम्हें पता है ना, धरती के सारे पानी का करीब 97.2% भाग खारा पानी है जो समुद्रों में जमा है। हाँ दीदी, लेकिन हमारे देश में कितनी सारी नदियाँ भी तो हैं।
1: लेकिन बेटा नदियों में भी कहाँ साल भर पानी रहता है बताओ तो?
2: वैसे भी भाई नदियाँ हमारे घर पानी देने थोड़े आ जाएंगे।
3: नदियाँ ना सही लेकिन हमारे यहाँ ट्यूबवेल तो लग ही सकता है। मानव तू बाथरूम में नहा रहा था या हमारी बातें सुन रहा था? दीदी वैसे मैं दोनों काम साथ साथ ही करता हूँ।
1: इसीलिए मानव तू ट्यूबवेल लगवाने की बात कर रहा है।
0: वैसे मम्मी साल के आधे दिनों में नल से पानी नहीं आता हो तो ट्यूबवेल तो लगवा ही लेना चाहिए।
3: मानव जब ट्यूबवेल लग जाएगा ना तो तुम दो बाल्टी की जगह 4 बाल्टी से नहाओगे।
2: बच्चों यही तो हमारी सोच में बदलाव की जरूरत है। देखो हमें किसी भी चीज को जरूरत से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक, हमें हमेशा अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए।
2: करे
1: अच्छा तुम्हारी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन बताइए तो ट्यूबवेल वाली बात का क्या हुआ?
2: अरे वसुधा ट्यूबवेल तो जब कहो तब लग जाएगा। विवेक मुझे याद आया कि पिछले महीने तुम्हारे दोस्त वरुण के यहाँ ट्यूबवेल लगा था।
0: हाँ हाँ उसके यहाँ लगा था।
1: अरे विवेक तो फिर तुम उन बोरिंग वालों से बात कर लो ना।
0: अरे मम्मी बात करने को क्या कह रही हो, मैं उन्हें आज ही घर ले आता हूँ, मेरी उनसे अच्छी जान पहचान हो गई है।
2: तो विवेक मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा।
0: जी भी ठीक है।
3: मम्मी भैया आज बाजार जाएंगे ना तो आप मेरे लिए पिज्जा या नूडल्स मंगा लेना।
1: सुनिए जी ये आजकल घर का खाना कम और बाजार का अधिक खाना बता देती हूँ।
2: खाना तो मैं भी बाहर ही जाता हूँ।
1: अच्छा अच्छा वैसे पकाना तो मैं भी नहीं चाहती, बाहर से लिया।
2: अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। बेटा मानव एक बात तो तय है कि घर का खाना ही शरीर को स्वस्थ रखता है, बाहर का खाना जितना कम हो उतना अच्छा। वसुधा मेरा लंच
1: किचन में रखा है। सृष्टि जा तो बेटा लंच लेकर आ पापा का।
2: अच्छा विवेक तुरंत जाते हैं।
0: जी जी
2: ओके वसुधा मैं हम
1: जाते हैं।
3: दीदी विवेक भैया के साथ राजीव अंकल भी है। नमस्ते
4: भाई
5: साहब,
1: नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप?
5: बस ठीक है। भाभी जी विवेक बता रहा था कि आप भी ट्यूबवेल लगवाना चाहती हैं।
1: हाँ भाई साहब क्या करें, आजकल पानी की बड़ी किल्लत हो गई है।
5: ओ क्या है भाभी जी, अपना शहर ही नहीं बल्कि इस समय तो देश के अधिकतर क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।
3: लेकिन अंकल हमारे देश में तो इतनी नदियाँ तालाब झीलें हैं फिर भी पानी की समस्या क्यों है?
5: देखो बेटे गर्मी के आते आते अधिकतर नदियों, तालाबों जैसे सतही जल स्रोतों में पानी सूख जाता है।
3: हाँ अंकल, गर्मियों में तो पानी के लिए ट्यूबवेल पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
1: इसीलिए हम चाहते हैं कि घर पर जब ट्यूबवेल लग जाएगा तो पानी की चिंता ही नहीं रहेगी।
5: हाँ वो तो है भाभी जी, घर पर ट्यूबवेल होने से जब चाहे तब पानी भर सकते हैं।
0: अगर पानी निकल आए तो।
3: निकलेगा क्यों नहीं, जमीन के नीचे सब जगह पानी ही तो है।
5: देखो बेटे, नलकूप में पानी निकलना उस स्थान के भूजल स्तर पर निर्भर करता है और आज लगभग सभी जगहों पर भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है।
1: बच्चों तुम अंकल से बातें करो, तब तक मैं तुम लोग के लिए ठंडा लेकर आती हूँ। ठीक है?
3: ठीक है अम्मा। अंकल हमारे इलाके में तो भूजल स्तर अच्छा ही होगा ना?
0: मानव तुझे पता नहीं अपने चौराहे वाले नलकूप में पानी का स्तर कम हो गया है।
3: क्या जल स्तर कम हो गया है? धरती में तो बहुत जल है, फिर धरती से ये जल कम कैसे हो गया?
1: धरती के समस्त जल की मात्रा का 0.78% भाग भूगर्भ जल के रूप में है।
5: हाँ, भूगर्भ जल की मात्रा पृथ्वी के समस्त जल राशि का 1% से भी कम है।
0: और पृथ्वी पर भूगर्भ जल का स्तर सभी जगह समान नहीं है।
3: तो क्या जमीन में नीचे सब जगह पानी नहीं है?
0: मानव किसी भी स्थान पर भूगर्भ जल का स्तर इस तथ्य पर निर्भर है कि उस स्थान की संरचना कैसी है।
5: हाँ मानव, भू जल स्तर उस क्षेत्र में पाए जाने वाली चट्टानों के प्रकार व मिट्टी पर निर्भर करता है।
1: तो मिट्टी की अधिक जल धारण की प्रवृत्ति भू जल स्तर को बढ़ाती है ना अंकल?
5: हाँ बेटी, मिट्टी की नमी धारण की क्षमता जितनी अधिक होगी वहाँ भूमिगत जल स्तर उतना ही अच्छा होगा।
3: अच्छा, तो भूमिगत जल का स्तर किसी जगह की मिट्टी की भौतिक व रासायनिक संरचना पर निर्भर करता है।
0: बिल्कुल ठीक मानव, साथ ही उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा पर भी।
3: मतलब भैया अच्छी वर्षा होगी तो भूजल स्तर भी बढ़ेगा, पर तब जब बारिश का पानी वहीं पर रोक ना लिया जाए, है ना?
0: बिल्कुल ठीक।
3: फिर तो रेगिस्तान जैसे क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत कम होती है वहाँ तो भूगर्भ जल स्तर बहुत कम होगा।
5: हाँ मानव, लेकिन रेगिस्तानों में भी कहीं कहीं भूमिगत जल मिलता है जो कहीं कहीं सतह पर जलाशय का निर्माण भी करता है। ऐसे क्षेत्र नखलिस्तान या ओएसिस कहलाते हैं।
3: अंकल हमारे देश में तो वर्षा का वितरण एक जैसा नहीं है, कहीं तो बहुत वर्षा होती है और कहीं बहुत कम।
5: हाँ बेटे ये सही है कि भारत में सभी जगह समान वर्षा नहीं होती।
0: और अंकल जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ भी तो भूमिगत जल स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि बारिश का कितना पानी धरती में पहुँचा।
5: हाँ बात तो सही है।
3: अच्छा तो बारिश का जितना अधिक पानी धरती में रिस कर पहुँचेगा भूमिगत जल स्तर उतना ही बढ़ेगा। सही समझे मानो तुम?
1: अरे बच्चों अंकल को परेशान तो नहीं कर रहे हो तुम लोग?
5: अरे नहीं नहीं भाभी जी, बल्कि ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं।
1: अरे भाई साहब इनकी तो आदत ही है बातें करने की।
3: और मम्मी की आदत है हमारे खाने पीने का ख्याल रखने की।
1: और आज सभी के लिए मैंने सत्तू का शरबत बनाया है।
3: सत्तू का शरबत? मम्मी मुझे तो सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है, क्या वो मिलेगा?
0: मानव तुम्हें तो सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड के अलावा कुछ और पसंद भी है।
5: भाई मानव ये सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड इसकी आदत सेहत के लिए अच्छी नहीं है भाई।
1: सही कहा भाई साहब आपने, फास्ट फूड से शरीर का संतुलित विकास भी कहाँ हो पाता है।
3: मानव को ये बात समझ ही लेनी चाहिए।
0: अंकल मानव तो एक दिन समझ ही जाएगा। आप ये बताइए हमारे यहाँ ट्यूबवेल कब लग रहा है?
5: भाई विवेक अभी 10 दिन तो हमारी बोरवेल मशीन फ्री नहीं है। हाँ उसके बाद तुम्हारा ट्यूबवेल जरूर लग जाएगा।
3: 10 दिन बाद?
5: हाँ?
3: अंकल तो क्या आपकी बोर मशीन पहले से ही बुक है?
5: भाई मानव गर्मी के दिन आते आते ही ट्यूबवेल लगवाने वालों की संख्या बढ़ जाती है।
3: और करे भी क्या, पानी तो सभी को चाहिए ही।
1: हाँ? और नहीं तो क्या, जब सतही जल स्रोत सूख जाते हैं तो सभी भूमिगत जल स्रोत पर आश्रित हो जाते हैं।
0: और अंकल अकेले हमारे देश में ही ट्यूबवेलों की संख्या का आंकड़ा लाखों में है।
3: इतने ट्यूबवेलों से तो धरती का सीना छन्नी छन्नी हो गया होगा।
5: हाँ और फिर पानी तो सभी को चाहिए है ना। बच्चों जब सतही जल स्रोत से पर्याप्त और शुद्ध जल पानी नहीं मिलेगा तो मानव कहाँ जाएगा?
3: अंकल मानव कहीं नहीं जाएगा, वो तो यहीं रहेगा और 4 बाल्टियों से ही नहाता रहेगा।
0: फिर पीछे पड़ गई उसके। राजीव अंकल अपने मानव की नहीं बल्कि सभी मानवों यानी इंसानों की बात कर रहे हैं ना?
5: बिल्कुल ठीक विवेक, मेरे कहने का मतलब यही था।
1: अच्छा भाई साहब ये तो बताइए कि ट्यूबवेल में करीब कितना पैसा खर्चा होगा?
0: अंकल वरुण के यहाँ जो हुआ उसके आसपास ही पैसा खर्च होगा है ना?
5: शायद आपके यहाँ खर्च कुछ अधिक आए।
3: क्यों अंकल?
5: बेटे इस क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर निरंतर नीचे जा रहा है।
3: ओ अच्छा अंकल।
5: हाँ बेटे मैंने इस साल जितने भी नलकूप लगाए हैं सब में करीब 400 फीट से नीचे ही ठीक ठीक पानी निकला है।
3: 400 फीट नीचे?
5: हाँ, और ये जल स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है।
3: लेकिन अंकल मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भूगर्भ जल स्तर इतना कम क्यों होता जा रहा है।
5: देखो बेटे, अब जमीन से भूजल निकालने की मात्रा प्राकृतिक रिसाव से अधिक हो गई है।
3: अंकल ये प्राकृतिक रिसाव क्या होता है?
0: अंकल आप ही समझा दीजिए।
5: मानो लाखों करोड़ों वर्षों से बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर उतरता रहा है।
0: अंकल लाखों वर्ष पूर्व जमीन में उतरा पानी फॉसिल वाटर यानी जीवाश्म जल कहलाता है ना?
5: हाँ, बारिश या अन्य स्रोतों से पानी धरती की सतह से जमीन में रिसता रहता है। ये पानी जमीन के अंदर उपस्थित चट्टानों के बीच के रिक्त स्थान में जमा होता रहता है।
0: और मानव यही कहानी भूजल निर्माण की है, समझे?
3: तब तो अब धरती के अंदर पानी ही पानी हो गया होगा।
5: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मानव। इन चट्टानों में पानी को धारण करने की अपनी एक निश्चित सीमा होती है, पर जब इन चट्टानों के बीच की जगह पानी से लबालब भर जाती है तो पानी का ये स्तर उस स्थान का ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर कहलाता है।
3: तो अंकल इन दिनों भूजल स्तर की क्या हालत है?
5: मानव इस समय भूगर्भ जल के स्तर में भारी कमी आ रही है।
0: और जानते हो मानव, दक्षिण भारत में तो प्रतिवर्ष भूमिगत जल स्तर में 25 फीट की गिरावट हो रही है।
3: लेकिन हमारे देश में तो पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, फिर भी भूमिगत जल स्तर बढ़ता क्यों नहीं?
0: मानव पर्याप्त बारिश वाले क्षेत्र ही नहीं बल्कि जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उन इलाकों में भी भूजल स्तर में कमी देखी गई है।
3: ऐसा क्यों?
5: बेटे केवल अच्छी बारिश होने से ही भूमिगत जल नहीं बढ़ता।
1: हाँ, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए जल की पर्याप्त मात्रा धरती के भीतर पहुंचनी भी चाहिए।
0: और ये तभी संभव है कि बारिश के पानी को बहने ना दिया जाए, उसे वहीं रोक लिया जाए जहाँ पानी बरसता है।
3: और इसके लिए धरती पर पर्याप्त हरियाली का होना भी आवश्यक है। तो क्या पहले प्राकृतिक हिसाब से भूमि में जल की पर्याप्त मात्रा पहुंचती थी?
0: बिल्कुल मानव, पहले जनसंख्या कम थी, जंगल अधिक थे,
5: और अब तो हरियाली का नाम ही कहाँ बचा है। जहाँ देखो वहाँ कंक्रीट के जंगल ही नजर आते हैं।
3: कंक्रीट के जंगल?
1: अरे मानव, राजीव अंकल सीमेंट रेत से बने सड़कों मकानों की बात कर रहे हैं।
5: हाँ।
3: लेकिन कंक्रीट के जंगल से भूमि का जल का क्या संबंध?
5: देखो बेटे, सीमेंटीकरण से धरती पर गिरने वाली बारिश का पानी जमीन में नहीं रिस पाता,
3: और इस प्रकार बारिश का अधिकतर पानी व्यर्थ बह जाता है। तो क्या हुआ, ये पानी नदियों नालों और तालाबों में तो पहुंच रही है।
0: मानव वर्षा का पानी सीधे नदियों नालों और तालाबों में अकेले नहीं पहुंचता, वो अपने साथ मिट्टी की बहुत सी मात्रा जल स्रोतों में जमा कर देता है, समझे?
1: मिट्टी की अधिक मात्रा से सतही जल स्रोतों की गहराई कम हो जाती है, जिसके कारण ही अधिकतर जल स्रोतों में पानी नहीं जमा हो पाता, और होता भी है तो बहुत कम।
5: हाँ, पहले तो झीलों तालाबों में जमा पानी इसका धरती में समाता रहता था।
3: अच्छा, तो यही कारण है कि पुराने समय में भूमि का जल स्तर अच्छा था।
1: अब से करीब 30-40 साल पहले मानव नदियों के किनारे बसे गांवों और शहरों में कुछ ही फीट खोदने पर जमीन से पानी निकल आता था, मालूम है?
5: और अब तो सैकड़ों फीट खोदने पर भी पानी का अता पता नहीं होता।
0: अंकल हमारे देश के कई राज्यों में भूमिगत जल का स्तर सैकड़ों फीट नीचे उतर गया है।
5: और ऐसा मानव के कारण ही हुआ है।
3: मेरे कारण? मैंने क्या किया? वो बाल्टी पानी से नहाता है और पूछता है मैंने क्या किया।
0: सृष्टि फिर से
3: मुझे बदनाम कर रही है।
1: बेटा सृष्टि तुझे बदनाम बिल्कुल भी नहीं कर रही है, वो तो सब मजाक कर रही है।
0: और मानव राजीव अंकल का मतलब तुझसे नहीं बल्कि सारे समाज से है।
3: अच्छा, अब मैं समझा कि हमारा भूमि का जल स्तर निरंतर कम क्यों होता जा रहा है। हमने जंगलों को नष्ट कर कंक्रीट के जंगल बनाने के साथ ही प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ा है, क्यों भैया? ठीक कहा ना मैंने?
0: बिल्कुल ठीक कहा मानव।
1: और मानव अनियंत्रित विकास से अब तक तो सतही जल स्रोतों को ही खतरा था, लेकिन अब तो भूमिगत जल स्तर पर भी खतरा मंडरा रहा है।
3: गिरते भूगर्भ जल स्तर से तो ऐसे ही संकेत मिलते हैं कि अब भूजल स्रोत भी मानवीय स्वार्थ की भेंट चढ़ जाएगा।
5: मानव अपनी बढ़ती जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमिगत जल का भरपूर दोहन कर रहा है।
0: अंकल मैंने सुना है अकेले यूरोप में 80% पेयजल की आपूर्ति भूजल से ही होती है।
5: हाँ, तो बच्चों में क्या बता रहा था कि भूमिगत जल का दोहन समय के साथ साथ बढ़ रहा है।
0: हाँ अंकल, विकासशील देशों में तो कुल जल की 80-85% मात्रा कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है।
3: अंकल इसमें भूजल की मात्रा कितनी होती है?
5: बेटे अकेले भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किए जल की आधी से अधिक मात्रा भूजल की होती है।
1: और हाँ बच्चों, विभिन्न कृषि फसलों में जल की खपत भी अलग अलग है।
5: और हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र में बोई जाने वाली गन्ने की फसल है, जो कुल भूमि के 2.5% भाग पर बोई जाती है, लेकिन इसके लिए कुल पानी का 60% भाग खप जाता है।
3: अच्छा, तो इसका मतलब चीनी की मिठास में पानी की बहुत मात्रा खप जाती है।
0: बिल्कुल माना, बिल्कुल। और जानते हो, जो तुम्हें ये सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है ना, उसकी एक छोटी बॉटल के निर्माण में भी करीब 3-4 लीटर पानी लग जाता है।
3: अच्छा भैया, सॉफ्ट ड्रिंक की एक बोतल के पीछे 30 बोतल बराबर पानी लग जाता है।
0: सृष्टि,
5: इतना ही नहीं, उद्योगों में कृषि में प्रयुक्त रसायनों से सतही जल के साथ ही अब तो भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है।
1: ठीक कहा भाई साहब आपने, तभी तो कभी कभी हमारे यहाँ नल में आने वाला पानी बदबूदार होता है।
3: अंकल, हमारे यहाँ लगने

0: ट्यूबवेल में तो साफ पानी आएगा ना?
1: हाँ, साफ पानी निकालने के लिए हमें धरती की अधिक गहराई से पानी निकालना हो।
0: क्या भाई साहब, अधिक गहराई पर भूगर्भ जल क्या शुद्ध होता है?
1: हाँ, भूगर्भ की ऊपर जल की तुलना में अधिक गहराई का जल अधिक स्वच्छ होता है।
0: भाई साहब, लगता है आप हमारी ट्यूबवेल का बजट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं।
2: वैसे भी अंकल, अब तो कई जगह जो भूमिगत जल उपयोग किया जा रहा है वो तो हजारों लाखों वर्ष पुराना फॉसिल ग्राउंड वाटर है।
0: तो इसका मतलब हम धरती के जल भंडार को तीव्र गति से खाली कर रहे हैं।
2: मानव यही नहीं, भूजल के दोहन के साथ मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है।
1: हाँ मानव, जिस प्रकार से भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है उससे तो ऐसा ही लगता है कि भूमिगत जल भंडार खत्म होने में अधिक वर्ष नहीं लगेंगे।
0: सही कहा भाई साहब आपने, हमारे देश के अनेक भागों में भूमिगत जल में आर्सेनिक, नाइट्रेट और फ्लोराइड जैसे रसायनों की मात्रा बहुत बढ़ गई है।
2: और मम्मी, इस अशुद्ध जल के सेवन से करोड़ों लोग बीमारी का शिकार भी तो हो रहे हैं।
0: भैया, तो आदमी शुद्ध जल कहाँ से लाए? अधिकतर सतही जल तो प्रदूषित हो ही चुका है और अब तो भूमिगत जल भी शुद्ध नहीं रहा।
3: हाँ मानव, कभी अमृत समझे जाने वाला गंगा यमुना नदियों का ये जल पहले ही प्रदूषित हो चुका था, अब तो भूजल भी प्रदूषित हो गया है।
1: हाँ, भाई भाभी जी, पानी की बातें करते करते आप तो मुझे पानी पिलाना ही भूल गई।
0: मैं आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ, ठीक है? मम्मी, हम सबके लिए भी लेते आना।
3: भला सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाला मानव नींबू पानी कब से पसंद करने लग गया?
0: आज सही दीदी, कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए।
1: परंपरागत शीतल पेय बाजार के सॉफ्ट ड्रिंक से लाख गुना बेहतर है।
2: और अंकल, भारत में तो जल संरक्षण की परंपरा प्राचीन समय से ही है, फिर भी भारत जैसे देश में पानी की समस्या गहरा रही है।
1: हाँ विवेक, हमारे देश में तो वर्षा जल संग्रहण की कई प्रणालियां प्रचलित थी, लेकिन विकास के नाम पर जल संरक्षण की परंपरागत प्रणालियों की उपेक्षा से जल संकट की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: अंकल, हमारे देश के राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में तो वर्षा की बूंद बूंद को सहेजने की प्रथा थी।
0: शायद तभी बूंद बूंद जल से घड़ा भरने की कहावत बनी। लीजिए भाई साहब नींबू।
1: थैंक यू बाबूजी,
0: लो बेटा,
1: बहुत जरूरत थी इसे।
3: मम्मी, प्राचीन भारत के लोग जल की बूंद बूंद का बड़ी कुशलता से उपयोग किया करते।
1: बेटी, वर्तमान में भी हमारे देश में कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने पारंपरिक जल प्रणालियों को पुनः जीवित किया है।
0: अंकल, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग भी तो वर्षा जल संग्रहण के लिए स्थापित की जाने वाली प्रणाली है ना? हमारे स्कूल में भी ऐसा ही किया जा रहा है।
1: हाँ बेटे, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में सरकारी और निजी भवनों की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को संग्रह कर पाइपों द्वारा सीधे जमीन में उतारा जाता है।
0: मम्मी, तब तो हमें भी अपने घर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगवा ही लेनी चाहिए।
4: क्यों नहीं बेटा, भूमिगत जल स्तर में हमें भी तो अपना योगदान देना चाहिए।
1: हाँ भाभी जी, यदि भूमिगत व सतही जल दोनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए तो काफी हद तक पानी की समस्या हल हो सकती है।
2: आज हम जितना पानी बचाएंगे कल वही पानी हमारे काम आएगा।
0: मतलब अब हमें भी पानी की गुल्लक बनानी पड़ेगी।
2: लेकिन हमारी पानी की गुल्लक ऐसी होगी जिसमें कोई भी पानी जमा कर सकेगा।
3: हमारे परंपरागत तालाब, कुएं, कुंडी, पोखरे, जोहर, झीलें भी कुछ ऐसी गुल्लकें थी जिनमें हम भूमिगत जल को सहेज कर रखते थे।
1: कहा सृष्टि तुमने, और आज इन जल संचयन प्रणालियों को आधुनिक तकनीक द्वारा और भी कुशल बनाए जाने की आवश्यकता है।
2: हाँ अंकल, गहराते जल संकट से निपटने के लिए हमें जल संग्रहण के तमाम तरीकों को अपनाना होगा।
0: मैं एक अच्छा तरीका बताऊँ भूजल स्तर को सुरक्षित रखने का?
1: हाँ
0: दीदी बताओ ना।
3: मम्मी, मानव यदि नहाने के लिए दो के बजाय एक बाल्टी से ही काम चला ले तो भी जल की बहुत सी मात्रा सुरक्षित रह सकती है।
4: ये तो सही कहा सृष्टि तुमने, लेकिन तुम हमेशा मानव के पीछे क्यों पड़े रहे?
2: पर मानव, तुम्हारा क्या कहना है?
0: भैया, मैं अब नहाने में ही नहीं बल्कि सभी कार्यों में पानी को बर्बाद करूंगा। क्या? मेरा मतलब है कि नहीं करूंगा।
1: बहुत अच्छे बेटे, बस इसी प्रकार हर इंसान जल के संरक्षण के लिए प्रयासरत हो जाए तो फिर भूमिगत जल लाखों वर्षों तक जीवन को बनाए रखेगा।
2: अंकल, जब हमारा मानव जल की महत्ता समझ गया तो हमें विश्वास है कि एक दिन मानव यानी समाज भी प्रकृति के इस अनमोल उपहार को सहेजना सीख लेगा।
0: भैया, मेरा उपहार कहाँ है? पिज्जा, नूडल्स,
2: मानव।

0: मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 23वीं कड़ी सुन रहे थे, धरती का अमृत।
1: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख कर चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
1: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखते हैं हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समय यदि देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट करें।
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैर में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: वहाँ भी जगह मिल जाए, अपना लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें इससे। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बमीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है,
1: बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस हैं।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है लूज मोशन के लिए कुछ टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ये ORS?
1: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है ये, किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही कि सुबह जल्दी उठें
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपको जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो वो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें थोड़ा सा, जितना हो सकता है ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। ये एक संक्रामक रोग है जो आनुवांशिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, इस रोग की चपेट में आ सकता है। टीबी का 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है। 2 हफ्ते लगातार दवा खाने के बाद बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं रहता। टीबी हाथ मिलाने, शौचालय इस्तेमाल करने, खाना और बर्तन बांटने से नहीं फैलता। आइए टीबी के मरीज से भेदभाव न करें और मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है, जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है, जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है।
1: राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं
2: कभी जनधन हानि न हो। लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाँ जी मैडम, किधर चलना है?
2: चले शहर घूमने।
1: चलो फिर।

0: हाँ जी मैडम आया मजा या और घूमना?
1: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं उरन विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सॉन्ग क्रेडिट्स सिंगर्स नेहा कक्कर, रॉमी, अरुण एंड इक्का, रिक्रिएटेड तनिष्क बागची, लिरिक्स शब्बीर अहमद, ऑल योन टिप्स ऑफिशियल। सो लेट्स एंजॉय इट ऑल योन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे

हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

मेहरबा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो सिंगर म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आदित्य रेखाड़ी म्यूजिक लाविटर मेहरबा ओनली ऑन सुरु शारदा 90.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा

0: फिर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: चोरी चोरी देखे जाए पिया, गोरिया नृत्य करे थुमकिया थुमकिया।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: अरे सुनीता कैसे बा मुनिया।
6: नमस्ते आशा दीदी,
5: सब ठीक बा?
6: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
5: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रही नी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम।
7: और आसपास कहूं भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़प जा मच्छर बन पर भारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या है। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरो साधन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों?
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या?
0: क्या?

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
0: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर

0: शिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
1: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी

अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें? ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। म्यूजिक, देसी ट्रैप, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर सिमरन कौर टडली, टाइटल दिलबर जानी। लेट्स लिसन टू इट ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: सुनो शारदा।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। तो दादी बोलती है तू तो दुनिया में सबसे अलग है।
3: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है कि तू क्या चीज है।

0: दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
1: खाने में एक चम्मच घी या तेल है जरूरी,
2: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
1: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
2: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी? और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Ole ole ole. Oh, Shonak. हेलो कौन
2: नमस्कार हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं
2: जल्द मिलते हैं
1: हेलो हेलो हेलो
4: आ रहे हैं दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते तो दस्त के लिए तैयार रहना घर में ORS और जिंक है ना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
6: हाय मैं हूं रणविजय आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM

0: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
3: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
3: शिशु की सही देखभाल से
2: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: स्मार्ट की सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज़ वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जन्मदिन मुबारक हो तारा।

0: अरे हमारे यहाँ कचरा तो काम वाली बाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे हैं?
1: जब मैं टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा।

0: करेंगे कचरा पार्टी।
1: हाँ हाँ, हमें जाने की कोई भी जल्दी नहीं है।
2: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
3: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
2: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
1: सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
0: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
4: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
5: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
4: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
5: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा।
2: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
4: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
5: बहुत अच्छे तारा, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
6: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दे तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
0: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
5: नहीं चंदन, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
4: वाह, कचरा भी आएगा तुम्हारा काम। तो ये गया गीले कचरे में।
1: और मेरे पास है सूखा कचरा।
5: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह घर पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
4: हजारों साल तक सड़ते नहीं
0: और खतरनाक भी होते हैं।
5: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह, अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो। इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े। और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
0: वाह, बार बार इस्तेमाल।
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
5: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
4: अब आप देखिए अब्बा, हमारी कचरा कला। कचरा पार्टी की कचरा कला।
0: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
7: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
3: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.